إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

0: at 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Shifa wahan se shuru hoti hai jahan kudrat muskurati hai. Schwabe Single Remedies. कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो.
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें. कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें. डेंगू जानलेवा मर्ज है. इलाज से बेहतर एहतियात है. दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
4: FM 24/7 365.
2: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत.
5: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह.
2: पाक फौज जिंदाबाद.

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. क्योंकि रकमी है 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
2: Fund transfer हो या कोई भी bill payment. Always on customer support के साथ.
1: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: जो तुम चाहो.
1: Download the app now.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave,
6: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka,
3: and Bospel, Machhar Aap Se Dur, Rehne Par Majboor,
7: and Rakmi Islamic Digital Bank, Yahan Milenge Real Solutions, Kyunki Rakmi Hai 100% Islamic.
8: Bain Al-Aqwami Safar Par Rawana Hone Wale Mutawajjo Hoon, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: कुदरत का निजाम तवाज़ुन पर कायम है।
11: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाज़ुन बिगड़ जाता है।
12: घर के अफराद और आमदन में तवाज़ुन
13: हमारी जिम्मेदारी है।
14: खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन FM 100
9: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
15: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान
9: मार्का हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बनी ताकत और जज्बा बना पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद।
16: पाक फौज

0: It's 8:30 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
3: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
2: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
3: Jo tum chaho.
2: Download the app now.
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिस्पन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
0: AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
5: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
6: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: एंड मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
7: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
8: Us on facebook.com/fm247365
9: मार्का हक, आवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत।
10: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
11: पाक फौज जिंदाबाद।
12: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।
13: ट्रैफिक अपडेट के साथ मैं हूँ फारूक इज़हार। शहर कराची की सड़कों और शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ इस तरह है। FM 100 को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक कुछ जगहों पर ट्रैफिक का इस वक्त दबाव देखा जा रहा है। मुर्तज़ा चौरंगी से वो ट्रैफिक जो इस वक्त जा रहा है ब्रुक चौरंगी और वहां से आगे की जानी उसके दरमियानी रास्ते पर ट्रैफिक का कुछ दबाव है और गाड़ियां स्लो मूव कर रही हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पे वो लोग जो सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। जेल चौरंगी से वो ट्रैफिक जो हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी की जानी आ रहा है उस पर भी ट्रैफिक कुछ स्लो मूव कर रहा है, जबकि हबीब बैंक चौरंगी से वो तमाम ट्रैफिक जो माणिपुर रोड की जानी जा रहा है उस पर भी ट्रैफिक का कुछ दबाव है, लिहाजा अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। मजीद अपडेट रहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
12: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
6: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And per remittance per shandar inamat jeetne ka mauka paave.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And Bosspel, machhar aap se dur rehne par majboor.
5: And Rakmi Islamic Digital Bank, yahan milenge real solutions, kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
7: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
9: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
10: हमने अपना आपको से तीन बार मौत देखा।
11: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
12: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
9: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
13: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
9: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरूने मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
14: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
15: FM 247365।
16: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
17: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
16: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
18: जी हाँ, मुझे بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
17: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
16: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں۔
18: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔
17: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
18: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے،
16: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
17: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں۔
16: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
7: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
19: مارکہ حق، جب قوم بنے ایک آواز۔
20: دشمنوں پہ بجلیوں کی طرح
21: پاک فوج زندہ باد۔
22: یو بائے فینکس بیٹ

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. क्योंकि रकमी है 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
2: Fund transfer हो या कोई भी bill payment. Always on customer support के साथ.
1: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: जो तुम चाहो.
1: Download the app now.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडी जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paaye,
6: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka,
3: and Bosspel, Machhar Aap Se Dur, Rehne Par Majboor,
7: and Rakmi Islamic Digital Bank, Yahan Milenge Real Solutions, Kyunki Rakmi Hai 100% Islamic.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: Let's celebrate 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
11: پاک فوج زندہ باد۔
12: مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عہد کی تکمیل ہے۔ ایک ایسا سفر جہاں ہر آزمائش نے قوم کا حوصلہ بڑھایا اور ہر چیلنج نے قوم کو مضبوط بنایا۔ جب عوام کا یقین اور محافظوں کی قربانی ساتھ ہو تو تاریخ بدلتی ہے اور حق سر بلند ہوتا ہے۔ مارکہ حق، ایک سال جد و جہد کا، ایک سال فتح کا، ایک سال اتحاد کا۔

0: AM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
3: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
2: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
3: Jo tum chaho.
2: Download the app now.
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: ट्यूबलेट उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत ज़वाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाबिस सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
4: This program is brought to you by
0: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
5: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paave,
6: Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka,
3: and Bospel, Machhar Aap Se Dur Rehne Par Majboor,
7: and Rakmi Islamic Digital Bank, Yahan Milenge Real Solutions, Kyunki Rakmi Hai 100% Islamic.
4: Like us on facebook.com/fm247365.
8: FM247365.
9: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबिले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
10: पाक फौज जिंदाबाद।

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
0: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
3: जीते 20,000 रुपए. बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका. जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके. शराइत जवाबित लागू है. अस्करी बैंक.
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल. क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट. मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
2: किसने कहा था पैसे

0: us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: पाक फौज जिंदाबाद।
5: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।

0: your location for maximum music.
1: It's 10:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
2: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
3: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखाधड़ी, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
4: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.
7: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद,
8: पाक फौज जिंदाबाद।
9: बैक टू बैक, बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक। ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक। दिस इज एफ

0: 11 AM. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions, क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
0: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी. This public service message is brought to you by FM 100.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे. होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365.
0: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
0: Markai Haq, Awam ka jazba, muhafizon ki taqat.
5: 1 2 3. Hum chahe tufaan aandhiyon ki tarah, hum toote dushmanon pe bijliyon ki tarah.
0: पाक फौज जिंदाबाद.

0: It's 12 noon. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. FM 100.
4: 31 saal. FM 100 aapki awaaz. Assalamu alaikum Pakistan.
3: Assalamu alaikum Pakistan. Pakistan.
4: Marka-e Haq, ek saal sach ke saath, ek saal awam ki awaaz ke saath. Marka-e Haq, ye sirf ek saal nahi, ye azm, ittehad aur qurbani ki daastan hai. Jab qaum aur muhafiz ek saf mein khade hon, तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
5: पाक फौज जिंदाबाद।

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پر جمعۃ المبارک کی خصوصی نشریات. اللہ

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
2: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
1: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
2: Jo tum chaho.
1: Download the app now.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
6: मार्का हक जब कौम बने एक आवाज।
8: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
6: पाक फौज जिंदाबाद।
9: इट्स 24 आवर्स नॉन स्टॉप वाइब्रेशन connecting you holding you with FM 100
10: FM 100 FM 100

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
2: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
1: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
2: Jo tum chaho.
1: Download the app now.
3: हर शोबे सिंगल रेमेडी का सफर शुरू होता है मखसूस हर्बल बागात से, जहां बड़ी एहतियात से काश्त की जाती है। जर्मन साइंस से निखरा ये मयार आप तक पाकिस्तान में पहुंचाते हैं डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो शोबे सिंगल रेमेडीज, जिस पर पाकिस्तान करता है 75 सालों से एतमाद।
4: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
5: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
8: FM 247365।
9: पाक फौज जिंदाबाद।
10: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
1: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365।
7: मार्का ए हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बनी ताकत और जज्बा बना पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद,
8: पाक फौज जिंदाबाद।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
4: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: 100 FM।
8: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
6: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM 247365. Markaye Haq, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें आवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
9: पाक फौज जिंदाबाद।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Kyunki Rakmi hai 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. Yahan milenge real solutions. Jaise bas 5 minutes mein apna account open kare.
2: Fund transfer ho ya koi bhi bill payment. Always on customer support ke saath.
1: Kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
2: Jo tum chaho.
1: Download the app now.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: Like us on facebook.com/fm247365
6: fm247365 fm100
7: 31 saal fm100 aapki awaaz. Assalamu alaikum pakistan.
6: Assalamu alaikum pakistan. Pakistan
7: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत।
8: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
7: पाक फौज जिंदाबाद।
9: कीप इट लॉक्ड टू 100 FM।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो। श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद।
11: मुझे बराबर वाले अंकल के घर कभी नहीं जाना है। जब वो मुझे छूते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
12: बच्चों से जिनसी ज्यादती की कई निशानियां हैं, मसलन किसी खास जगह जाने का खौफ, बिला वजह चिड़चिड़ा होना, भूख में कमी या उदासी। इन निशानियों पर ध्यान दें, अपने बच्चों से खुलकर बात करें और इनकी बात पर यकीन करें। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मज़ीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
13: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: Like us on facebook.com/FM247365.
7: FM247365. मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज।
8: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
7: पाक फौज जिंदाबाद।
14: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
15: Assalamualaikum Pakistan.
16: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.

0: Your location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: कुदरती अज्जा इंतहाई नाजुक होते हैं, इसीलिए श्वाबे जर्मनी दुनिया का जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करता है ताकि अज्जा का खालिसपन महफूज रहे और तासीर में इजाफा हो. श्वाबे सिंगल रेमेडीज, जर्मन इनोवेशन और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, जिस पर है पाकिस्तान का 75 साल एतमाद.
5: मुझे बराबर वाले अंकल के घर कभी नहीं जाना है. जब वो मुझे छूते तो मुझे बहुत बुरा लगता है.
6: बच्चों से जिनसी ज्यादती की कई निशानियां हैं, मसलन किसी खास जगह जाने का खौफ, बिलावजह चिड़चिड़ा होना, भूख में कमी या उदासी. इन निशानियों पर ध्यान दें, अपने बच्चों से खुलकर बात करें और इनकी बात पर यकीन करें. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाए. मज़ीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें. वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
7: मुफाद्दे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
8: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान. फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं. जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
7: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
9: मार का हक जब कौम बने एक आवाज.
10: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह.
7: पाक फौज जिंदाबाद.

0: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
1: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
0: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
1: जो तुम चाहो,
0: डाउनलोड दी ऐप नाउ।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: Like us on facebook.com/fm247365
5: fm247365। पाक फौज जिंदाबाद।
6: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब आवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: Like us on facebook.com/fm247365
8: fm247365। मार्का ए हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बनी ताकत और जज्बा बना पहचान। पाकिस्तान जिंदाबाद,
9: पाक फौज जिंदाबाद।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions, क्योंकि रकमी है 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
2: Fund transfer हो या कोई भी bill payment, always on customer support के साथ.
1: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: जो तुम चाहो.
1: Download the app now.
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: हर शोबे सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। शोबे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: And par remittance par shandar inamat jeetne ka mauka paave.
3: Bank Al Habib, rishta bharose ka.
4: And Boss Pair, machhar aap se dur rehne par majboor.
5: And Rakmi Islamic Digital Bank, yahan milenge real solutions, kyunki Rakmi hai 100% Islamic.
6: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
7: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद,
11: पाक फौज जिंदाबाद।

Come on.

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum Pakistan. Welcome GI Nupa Khair Raghle to this beautiful radio station that is called FM 100 Pakistan. Aapka apna radio station. Lahore, Karachi, Islamabad, Peshawar, Abtabad, Mansera, Rahim Yar Khan, Hyderabad, Abtabad, Kharia, Jhelum, Gujarat, aur na jaane kahan kahan. Zinda Dilane Shahar. Lahore ko khush hamdeed kaha jata hai. In the meanwhile, Karachi, Roshniyon ke Shahar. कैसी गुजरी है जिंदगानी और रावलपिंडी इस्लामाबाद ट्विन सिटीज ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस पाकिस्तान दिस इज मी मोहम्मद अतीक खान कमिंग लाइव बराह रास्त व्हाट्सअप ऑल माय रेडियो फ्रेंड्स मार्के हक की खसूसी नशरियात एफएम 100 के सामा स्टेशन से पेश की जा रही है और हमें यकीन है कि आप लोग भी इस तरह सेलिब्रेशन में हमारा साथ देंगे याद है आखिरी साल आज ही के दिन क्या हो रहा था 7 मई से कुछ आगाज हुआ और 8 मई को क्या हुआ और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी कौम घबराई नहीं आज 8 मई है 8 मई से मुझे याद आया एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं छह नहीं सात नहीं आठ आठ जहाज हमने गिराए दुश्मन के वो भी हमसे 5 गुना बड़े दुश्मन के जिसने हमें ललकारा और पूरे मुंह की खानी पड़ी इस शो में मैं आप लोगों के साथ साथ रहूंगा टिल 8 PM आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-111-100 पर और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं द मेन वाइल हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में उनसे भी हम गपशप लगाएंगे और उनसे भी जानेंगे कि इस जमीन के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी और हम लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी बट जमीन से पहले मुझे याद आया कि ब्रेक कह रही है मेरी तरफ आओ क्योंकि 5:15 हुआ जाते हैं बल्कि होने में भी पूरे 10 सेकंड बाकी है हमने ब्रेक्स भी लेनी है तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं उसके फौरन बाद पलट के आते हैं कहीं नहीं जाना साथ देते रहना मोहम्मद अतीक खान का ड्राइव टाइम शो टाइम मार्क हक की खसूसी नशरियात अक्रॉस पाकिस्तान ऑन द बेस्ट नंबर वन डायल एफएम 100 पाकिस्तान आपका अपना रेडियो स्टेशन
1: It's 5:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
3: Assalamu alaikum, Pakistan.
4: Azane Asr pesh ki ja rahi hai. Sufi soap special quality ke taawun se.
5: Bismillahirrahmanirrahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azane asr ka waqt hua chahta hai.

0: स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: हुर्मत रसूल का तकाजा है कि तौहीन रिसालत से मुतालिक किसी भी खबर को बिना किसी तस्दीक के ना फैलाएं। ये पैगाम मुफादियामा के लिए वजारत इत्तिलात और नशरियात व कौमी विरसा और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
2: 100 FM।
1: कुरानी आयात और अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295B के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिले सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 की जानिब से पेश किया गया।
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Khan.
4: Both,
3: across the nation.
4: This is FM 100.
5: मुसलसल तहकीक और यकसा मयार के साथ बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात की फरहमी, 160 साल से दुनिया भर में शफा की एक शानदार रिवायत। शोवे सिंगल रेमेडीज जर्मनी और डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो, 75 साल से पाकिस्तान में काबिले एतमाद।
6: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: AGS ट्यूबलेट दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
8: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पावे।
9: बैकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: एंड बॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर रहने पर मजबूर।
11: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
12: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
13: FM247365।
1: मार्का हक, अवाम का जज्बा, मुहाफिजों की ताकत।
14: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
1: पाक फौज जिंदाबाद।
15: अभी तो हमने 4 शूट किए हैं ना, इससे ज्यादा भी शूट कर सकते थे, लेकिन फिर ये कहा गया कि शायद अगर ज्यादा मारे गए तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ओपन वॉर में शुरू हो जाए, ऑल आउट वॉर में शुरू हो जाए, तो उसी वजह से अपनी गनों को रोक दिया गया और 8 तैयारों पर इतफा किया गया। फिर दुनिया ने, पूरी दुनिया ने उसको कवर अप भी किया, कवर भी किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिफेंस आर्टिकल, डिफेंस जर्नल, जो आप उठा के देख रहे हैं उसमें कहा कि आप समझे कि पाकिस्तान ने 52 मिनट, 52 मिनट, 52 मिनट, 52 मिनट भारत को किस तरह से धूल चुकाई है, उस एयरफोर्स को किस तरह से शिकस्त दी है। तो ये इंडिकेशन थी और वही चीजें हैं जो अब जंग हमने नहीं शुरू की थी बुनियादी तौर पर।
16: बिल्कुल सर,
15: जंग भारत ने शुरू की थी और 2019 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, आपको बात याद है, उससे पहले जब वॉर थ्रेट डेवलप हो गए थे तो इमरान खान ने कहा था, एज ए प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि हम विल हिट यू बैक, अगर आप कुछ करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं, हम आपको मारेंगे,
16: कल गुजरेंगे।
15: उसके बाद आप 2019 में आपने देखा, जब 2019 में भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उनका जहाज आया, तो फिर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया और SU-30

0: फिर अभिनंदन को हमने कैप्चर किया और SU-30 जो वो भारत के अंदर गिर गया था, अभिनंदन पाकिस्तान में आके गिरा था, पाकिस्तान के लोगों ने उसको पकड़ा था। तो 2019 का सबक काफी होना चाहिए था कि उसके बाद पाकिस्तान ने टेलीविजन चैनल पे आके ये कहा, VGISPR ने, मुझे उनके लफ्ज याद है, कि वी हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आर चूजिंग एट द टारगेट ऑफ आर चूजिंग, जो बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि दुश्मन से आप अपना प्लेस ऑफ अटैक और टाइम ऑफ अटैक हमेशा सीक्रेट रखते हैं, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वॉर जो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने उसे सीक्रेट नहीं रखा, हमने कभी ऐसे आवांगे एंड विल हिट यू एट द टाइम ऑफ वॉर। फिर आपको पता है हम गए, हमने जाके उनके कैसे ब्रिगेड क्वार्टर पर हमला किया नौशेरा वैली में, जहां इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद था और वो ब्रीफिंग दे रहा था, GOC जनरल ऑफिसर कमांडिंग नॉर्दर्न कमांड भी उधर मौजूद था, वहां पर GOC 16 कोर भी मौजूद था, लेकिन पाकिस्तान ने उस बंकर को नहीं अटैक किया जिस बंकर के अंदर वो बैठे हुए थे, जिस ऑपरेशन रूम में वो बैठे थे, पाकिस्तान ने उसको अटैक किया जहां पे इर्द गिर्द की जगहें थी लॉजिस्टिक, और कह दिया कि उनको बता देना हम आए थे। तो इस दफा उनको सबक ले देना चाहिए था उससे कि यार ये तो कह भी चुके हैं और हिटबैक भी करेंगे और पहले भी किया, लेकिन अब जहां पे इस किस्म की क्यादत हो, जहां पे लोग ये कहते हो, जैसे अब ये BJP के लीडर का बयान आ रहा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो तो लोगों को चाहिए कि वो गाय का गोबर अपने बदन पे लगा ले, तो उन पर तापकारी के असरात नहीं होंगे, न्यूक्लियर तापकारी के असरात नहीं आएंगे।
1: सर ये समझते क्यों नहीं है, ये इस तरह की
0: जब आप मजहबी जनूनियत से होते हैं, जब आप हिंदुइज्म को जनूनियत और लड़ कोई दुनिया में कोई रिलीजन वॉर की तरगीब नहीं देता, हिंदू रिलीजन भी नहीं देता, हालांकि उनके रिलीजन में ऐसी ऐसी मसाल मौजूद है, जिधर वो ये कहते हैं चंकिया की जो फिलोसफी है, जिसमें वो कहते हैं कि जब आपको किसी से अपना गर्ज हो तो उससे हाथ मिलाएं, और हाथ मिला के अगर आपका काम हो जाए तो पीछे से छुरा घोंप दें, अगर दोस्त भी आपका काम, आप दोस्त से भी अगर आपका दोस्त भी आपका काम ना करे उसको भी मार दें। तो ये तो चंकिया की फिलोसफी है ना, कि जिसके पर वो, तो उसमें वो समझे कि शायद पाकिस्तान, और आप बेवकूफी देखें कि पाकिस्तान के ऊपर 22 अप्रैल को रात को हमला, जो अपना पाकिस्तान के ऊपर 6 मई को हमला किया रात को, 24 स्ट्राइक थी दोबारा जगहों पर, और उसके बाद फिर वो मस्जिदें थी और वो मदरसे थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान, उनका फॉरन मिनिस्टर कहता है कि ये हमने पाकिस्तान को रिंग करके बताया, पाकिस्तान फौज को, कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया इसलिए आप इस टसल में ना, और बेवकूफ के बच्चों जब आप किसी मुल्क के अंदर हमला करेंगे तो उसकी जो फौज है वो खामोश बैठी रहेगी,
1: नामुमकिन।
0: अभी मैं मार्को रूबियो की एक स्टेट मार्को रूबियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था,
1: जी सर,
0: उसके अंदर उसने ये कहा कि जी ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया, ये उसके अल्फाज में आपको कह रहा हूं, तो कहता है जब हमारे जब आप किसी दुश्मन पे हमला करेंगे तो वो स्टूपिड ही होगा दुश्मन, जो रिटेलिएट नहीं करेगा।
1: एग्री।
0: तो फिर हमने तो रिटेलिएट करना था ना,
1: करना था,
0: करना। हमने कह दिया कि फिर हम मारेंगे आपको, फिर हमने मारा और ऐसा मारा
1: पूरी जिंदगी याद रखेंगे
0: कि बब की बैटरी तबाह की, उनके ब्रह्मोस मिसाइल की साइट तबाह की, उनके डिफेंसिस को तबाह किया, उनके ब्रिगेड क्वार्टर पे मारा, और उसके साथ साथ जो 8 रफेल है जिसको ट्रंप तो 11 तक ले गया, हो सकता है उसको 15 तक भी ले जाए, उसका पता कोई नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान ने वो सबक सिखा दिया है कि अब कुछ सबक आ जाना चाहिए। अभी भी वो फिर उनका वो जो लोग हैं बेवकूफ किस्म के, वो उनका एक डिफेंस मिनिस्टर है वो नींबू सिंह, राजनाथ सिंह वैसे उसका नाम है, लेकिन वो है पूरा नींबू, क्योंकि वो आपको पता है रफेल जब आए थे तो उसके ऊपर नारियल फोड़ रहा था और नींबू निचोड़ रहा था,
1: जी जी बिल्कुल,
0: उसने उसके टायरों के नीचे नींबू रखे हुए थे, तो मुझे तो लगता है कि वो जो उसने नींबू निचोड़ा था ना रफेल के ऊपर, तो नींबू की खुशबू थी जिसने PL-15 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और जाके वो रफेल को लगा और रफेल तबाह हो गया।
1: सर जब भी इलेक्शन के कतः कलामी के लिए माफी चाहता हूं, जब भी इलेक्शन 2016 का देख लें, आपने 2019 की बात की, अब 2025 है, अभी भी आपने अगर दो दिन पहले उनके बयान को सुने हो मीडिया के थ्रू कि जी कराची है हम, मतलब मैं हैरान इस बात पे हूं कि ये बच्चों वाली बातें, इतनी बड़ी आर्मी से 5 गुना हमसे बड़ी आबादी के लिहाज से ताकत के, मतलब वहां पर कोई पढ़ा लिखा कोई समझदार बंदा कोई नहीं है।
0: आप मोदी की एजुकेशन देखे ना क्या, राजनाथ सिंह की एजुकेशन देखे, ये सारे RSS के जो RSS के ना RSS के 12,000 वहां पे ट्रेनिंग सेंटर जिनको शाखाज कहते हैं,
1: जी जी,
0: वहां वो जो ट्रेनिंग देते हैं वो सारी एंटी पाकिस्तान ट्रेनिंग देते हैं, फिर वहां पे उनकी यूनिफॉर्म होती है खाकी रंग की शॉर्ट और व्हाइट कलर की शर्ट, वो पहन के और वो बाहर परेड करते हैं, और वहां पे जो हल्फ उठाते हैं ना वो मैं हल्फ दोहरा नहीं सकता,

0: खाए कहाँ, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
2: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाब सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
4: किसी ने कहा था?

पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। ये मुल्क है तो हम लोग हैं, सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले साल आपको याद है आज की तारीख 7 तारीख से शुरू हुआ, 10 तारीख को एंड हुआ, पर आज आठ थी तो मीडिया पे भी हर जगह पे हम देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है। मगर दिल की बात करूं और आप भी दिल की बात करेंगे कि थोड़ा सा हम बड़े पुरसकून थे भाई, आर्मी मौजूद है, एयरफोर्स मौजूद है, नेवी मौजूद है, हमें क्यों टेंशन लेने की जरूरत। सबसे बढ़ के हमारे अंदर भी जज्बा कि हम बॉर्डर पे जाके लड़े हैं, शहादत हमें भी नसीब हो, और जब अल्लाह का करम हो तो हमने वो जंग जीती, अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन का मुकाबला किया, याद है ना। और जैसा कल DGISPR ने कहा था कि अभी तो हमने सिर्फ अपना 5-10 या ज्यादा से ज्यादा 15% शो किया है, मैं उसको राउंड अबाउट 10% ही कह देता हूँ, क्या ख्याल है, 90% रहता है। अभी तो इतने गौरी मिसाइल, क्या कुछ हमारे साथ इतने मिसाइल की रेंज है अब्दाली, और क्या कुछ हमारे पास मौजूद है, तो हमने उनको यूज ही नहीं किया। और सबसे बढ़ के फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिंदगी में पहली बार, इस दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ये हुआ कि अपनी सरजमीन पे रहते हुए दूसरे की सरजमीन पे जहाज, एक नहीं दो नहीं पूरे 8 जहाज गिराए हमने। अगर हम उनकी सरजमीन पे चले जाते तो फिर उनका क्या हाल होता। वो अक्सर कहते हैं ना कि, बल्कि मैं ही कहता होता हूँ कि श्रीनगर से बठिंडा तक दुश्मन को जिलत आमेज सबक सिखाया हम लोगों ने। आप लोगों के साथ साथ मार के हक की खसूसी नशियात FM 100 के इस्लामाबाद स्टेशन से आप सुन रहे हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अक्रॉस पाकिस्तान। व्हाट्सअप ऑल माय रेडियो फ्रेंड्स, हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो 051, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 051-111-111-100। इन द मीन वाइल आप लोग हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं 0306-929-3636। आई अगेन रिपीट 0306-929-3636। Wherever you are, whatever you do, stay with me. Good evening, Pakistan. ये जमीन है तो सब कुछ है, ये जमीन नहीं तो कुछ भी नहीं। इस जमीन की कदर करें, मैं अक्सर कहता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख लिया ये जमीन की कदर करते हैं। वैसे तो बातें बहुत कर लेंगे हम, बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं अक्सर, एक इंसानी हकीकत भी है, फितरत भी है, कि इंसान की दस्तरस में जो चीज आ जाए। ये हमारे बुजुर्गों से पूछे कि किस तरह उन लोगों ने कितनी मेहनत के बाद 1947 में ये वतन हासिल किया, अलामा इकबाल का ख्वाब हकीकत बना कायद आजम मोहम्मद अली जिना की कायद की सूरत में। सो जिंदा दलाने शहर कराची, गुड इवनिंग, क्या कर रहे हो, ड्राइविंग करें तो ड्राइव केयरफुली, हैव अ सेफ जर्नी। रोशनियों के शहर लाहौर, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हो, A1 फर्स्ट क्लास हो के करने पे हो, गुड इवनिंग, शाम बखैर। और रावलपिंडी इस्लामाबाद की शामें तो होती ही दिलकश है, गर्मी भी तो बहुत हो गई है, गर्मियां आ नहीं रही, आ गई है। मार के हकी खसूसी नशियात, हम सब मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जमीन है तो सब कुछ है, ये जमीन तो कुछ भी नहीं, कदर करें।

0: 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. क्योंकि रकमी है 100% Islamic. Rakmi Islamic Digital Bank. यहाँ मिलेंगे real solutions. जैसे बस 5 minutes में अपना account open करें.
2: Fund transfer हो या कोई भी bill payment. Always on customer support के साथ.
1: क्योंकि रकमी है 100% Islamic.
2: जो तुम चाहो.
1: Download the app now.

0: आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम से कम दो बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक
2: 24 सिंगल रेमेडीज तैयार की जाती हैं 100% ऑर्गेनिक अड्डा से, जो मसनूई खाद और पेस्टिसाइड से बिल्कुल पाक है, जिसे निखारा है जर्मन साइंस ने। 24 सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होम्यो पाकिस्तान, 75 सालों से आपका एतमाद।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: एप्लीकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय AGS ट्यूबलेट. दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी. दिल को है आराम. एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ. बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का. एंड
2: बॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर.
3: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक.
1: मार्का हक, ये वो दास्तान है जहां आवाज बन ताकत और जज्बा बना पहचान. पाकिस्तान जिंदाबाद.
4: पाक फौज जिंदाबाद. जिंदाबाद
5: 100 FM 100. और हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज मार्का हक को. कल से हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हो चुका है, जो आप समाज फरमा रहे हैं. 10 तारीख तक ये ट्रांसमिशन चलती रहेगी. अक्रॉस पाकिस्तान मेरी आवाज गूंज रही है. मेरा नाम है मोहम्मद अतीक खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ब्रिगेडियर नादर मीर साहब. अस्सलाम वालेकुम सर.
6: वालेकुम
5: सर, क्या हाल आपके? ठीक है?
6: परफेक्ट
5: सर. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. बहुत मुबारक हो. हम सेलिब्रेट करें अपनी विक्ट्री को, मार्का हक को, कि लास्ट ईयर 7th जब मई था उससे ये एक तनाव की सूरत हाल दुनिया के लिए शुरू हुई. मगर मैं अक्सर प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानियों ने इसे सेलिब्रेट किया. हमें तो हमारे लिए तो वेरी फ्रेंकली फेस्टिवल का वो जंग तो हमें लग रही नहीं थी. जहां से मिसाइल चल रहे थे, हम लोग वीडियोज बना रहे थे, साथ बैठे हुए थे, हम कदम ब कदम शाना बशाना चल रहे थे. दुनिया को शायद टेंशन होगी, हमारे दुश्मन को टेंशन होगी, हमें टेंशन नहीं थी.
6: FM 100 से तमाम पाकिस्तानियों को मार्के हक की मुबारक. और एक साल पहले मई 2025 में जो पाकिस्तान ने एक नई तारीख बना दी, जंगी तारीख भी और कौमी तारीख भी, जिसमें पाकिस्तान ने वंस अगेन अपने से बड़े दुश्मन यानी इंडिया को शिकस्त फाश दी. और न सिर्फ ये कि उसको हराया जंग में, शॉर्ट वॉर में, उसके अलावा इंडिया का जियो पोलिटिकल स्ट्रेचर, उसका जो दुनिया में परसेप्शन था वो बहुत नीचे आ गया. इट वॉज इनफैक्ट टार्निश्ड. और पाकिस्तान जियो पोलिटिकल स्टेचर वॉज एलिवेटेड, यानी पाकिस्तान का दुनिया में जो एक तासुर था, कद बहुत एज अ नेशन कौम के तौर पे बहुत बढ़ गया. और आपका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है अतीक. पाकिस्तानी कौम, मैं हमेशा कहता हूं, द मोस्ट रिजिलियंट नेशन, बहादुर कौम है और जोश वाली कौम है. और जिसने भी इस पर हमला किया वो बहुत ही बेवकूफ है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान कौम ने रिस्पॉन्ड किया और आगे भी करेगी पाकिस्तान के दिफा के लिए, जब भी खतरा हुआ पाकिस्तान को, जब भी कोई हमला हुआ पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की कौम पूरी इकट्ठी हो गई हमारी फौज के साथ और हमारी कौम फौज के साथ मिलके पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा रेडी रही है.
5: एग्री सर विद यू. सर मगर इस दुश्मन को समझ क्यों नहीं आती फ्रॉम 1947 टिल नाउ? अगर मैं पिछले तीन चार साल की, मतलब पिछले तीन हिस्ट्रियों की बात करूं, 2016 की बात कर लूं जब भी इलेक्शन होता है, 2019 आपके सामने है, उनके पायलट को हमने पकड़ा और क्या कुछ किया, अब 2025, फिर भी से अकल के नाखन नहीं लेता या इतने ही, मतलब हम कहते हैं एक तो अनपढ़ और बिल्कुल ही, मतलब समझ से बालातर बात है कि उनको समझ क्यों नहीं आ रही, कि मतलब क्या वजह है आपके ख्याल से, इन योर पॉइंट ऑफ व्यू?
6: इसकी बड़ी दो वजूहात हैं. एक वजह तो है कि इंडिया ने अपने ऑब्सेशन में, अपने दिमाग में, यानी इंडिया के दिमाग में और उसका जो कोर इंडिया है, उन्होंने एक ओवरसाइज्ड जियो पोलिटिकल एजेंडा बनाया है, जिसका मतलब है जिस इंडिया, अखंड भारत, शाइनिंग इंडिया, ग्रेटर इंडिया वगैरह वगैरह, ये उसके मुख्तलिफ नाम है और भी हैं, वो दुनिया में ये तासुर देना चाहते थे और देना चाहते हैं अभी भी अपनी पिछले साल की शिकस्त और बेइज्जती के बावजूद कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर, यानी भारत जो है वो एक बड़ी ताकत है. क्योंकि दुनिया में ग्लोबल पावर जो है एक ही है, अमरीका, और ग्रेट पावर चाइना, रशिया और भी हैं, पुराने जो थे बर्तानिया, फ्रांस, अब नीचे आ गए हैं बहरहाल, और नई बन भी रही हैं. तो वो अपने आप को एक तो दुनिया में एक पावर दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत हैं, और जाहिर है उस ताकत बनने के लिए वो जो समझती हैं जिसको हराना है या हटाना है रास्ते से, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान. क्योंकि उन्होंने तो कबूल ही नहीं किया पाकिस्तान को. पाकिस्तान को आपने पूछा 1947 से, तो उन्होंने क्या आपको कबूल किया 1948 में? कश्मीर में जंग हुई, कश्मीर उन्होंने आपसे लिया, हैदराबाद भी लिया और जूनागढ़ भी वगैरह, तो उन्होंने कबूल नहीं किया, आज भी कबूल नहीं करते। अब तो वो आप कश्मीर की अमन की बात करते हैं, अमन के रास्ते हल करने की, तो वो आपके आजाद कश्मीर को लेने की बात करते हैं। तो इसलिए दे आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ पीस, अमन पे तो आना ही नहीं चाहते। अगर तो हमने तो बहुत दफा उनको ऑफर किया, ये एक वजह है उनका, ये जो बनाया हुआ उनके ख्याल में, इंडिया के ख्याल में, दिल्ली के ख्याल में कि इंडिया को बड़ी अजीम ताकत बनना है और उसके लिए पाकिस्तान या बांग्लादेश या दूसरे जो उनसे छोटे मुल्क हैं या खत्ते के मुल्क हैं उनको खत्म करना है या उन पर बालादस्ती हासिल करनी है या उनको हराना है, एक तो ये। दूसरी वजह है उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, चल रही है, उन्होंने पहले भी जो इवन इससे पहले जो बीजेपी के रिजीम से पहले भी आप समझें, ये लोग भूल जाते हैं कि 1948 में बीजेपी तो थी नहीं, तो नेहरू ने जो कांग्रेस का था लीडर उसने फौज भेजी कश्मीर में। 1971 में इंदिरा गांधी ने अगेन फ्रॉम कांग्रेस ईस्ट पाकिस्तान मशरक पाकिस्तान में इसके खिलाफ हमारे खिलाफ फौज भेजी। तो ये कोई नई कहानी नहीं है कि जी बीजेपी की वजह से या मोदी की वजह से शुरू हुआ, फर्क ये है कि इससे ज्यादा शिद्दत आ गई है, दे हैव बिकम वर्स। और जो अमन का रास्ता या अमन की कोशिश थी उसको उन्होंने पीछे और पीछे कर दिया, जो भी थी पहले थोड़ी सी थी वो भी खत्म कर दी है या कोशिश की है। तो ये जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनका या इंडिया के अंदर, अभी उन्होंने इंडिया का जो मीडिया है वो बिल्कुल बॉलीवुड या एक अनरियलिस्टिक या गैर हकीकी मीडिया के तौर पे उसने ब्रेन वॉश किया हुआ है इंडिया के अच्छे खासे लोगों को, जो इस कहानी है कि पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान में हर खराबी है, पाकिस्तान को उन्होंने हराना है और वगैरह वगैरह। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये मिलाएं तो आपको समझ आती है जो आपका सवाल है कि अगरचे उनको क्लियर है कि पाकिस्तान तो अपना दिफा कर सकता है और करेगा और दिफा से ज्यादा करेगा, उसके बावजूद ये बार बार ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि दे आर ऑलरेडी इन द माइंड सेट, उन्होंने अपने आप को खुद फंसाया हुआ इस गेम के अंदर। हमने नहीं फंसाया, हम तो अमन ऑफर करते थे पहले भी, अभी भी करते हैं।
5: एग्री सर विद यू सर। थोड़े पिछले साल में चलते हैं, 2025 7 मई और आज 8 मई है, इस वक्त क्या सिचुएशन थी, आप कहां पर थे और क्या हो रहा था? और माशाल्लाह आप तो अंदर के बंदे, मैं अक्सर कहता हूं बरगीजी नादर मीर साहब हमारे साथ मौजूद है, तो क्या सिचुएशन थी, क्या फीलिंग थी इस वक्त आपकी?
6: पिछले साल में भी जब ये हुआ तो आपको पता है आप सब की तरह तमाम पाकिस्तान यूनाइटेड था पाकिस्तान के दिफा के लिए, जब पाकिस्तान पे हमला हुआ और बार चीजों के अलावा एक चीज मीडिया थी हमारी, तो जिस हम तो हूं मैं किताबें भी लिखता हूं जियो पॉलिटिक्स पे और डिफेंस सब्जेक्ट्स के ओवर वॉर पे, और दूसरा इस लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान ने जंग जीत भी ली 4 दिन की, तो उसके बाद भी मैंने आर्टिकल लिखा जिसका नाम था विक्ट्री टू पाकिस्तान। उसमें और बातें बताने के अलावा हमारी फौज एयरफोर्स नेवी वो सारी कार्रवाई और जो हमने जीती वो बात करने के अलावा दो बातें कही थी मेन, वो ये थी कि एक तो इंडिया दोबारा हमला करने की कोशिश करेगा या बदला लेने की या दोबारा उस पॉलिसी पे कायम है पाकिस्तान दुश्मनी की, एक तो ये, और दूसरा ये कि बहरहाल हमको चाहिए कि हम अमन के लिए कोशिश करें क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, पाकिस्तान तो जारियत नहीं कर रहा, लेकिन आप अगली जंग के लिए भारत ने करनी है सिंदूर 2 नाम दे 3 नाम दे जो भी नाम दे आप, यानी पाकिस्तान उसके लिए तैयार रहे। तो ये पिछले साल की बात है और उसके दौरान जब जो हो रही थी जंग शॉर्ट, इट वॉज वेरी शॉर्ट, आपको पता है 4 दिन का टाइम था 7 से 10 तक, तो उसके अंदर हम फुल टाइम अपने जो भी हमारे मुख्तलिफ तरीके थे कंट्रीब्यूट करने के, अब हर चीज तो मैं यहां नहीं बता सकता, लेकिन मीडिया के ऊपर जो काम था वो मीडिया की, देखे ना आजकल एक जंग मीडिया की जंग है, दिस इज अ वॉर ऑफ परसेप्शन, दिस इज अ वॉर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, तो मीडिया की जंग बहुत इंपॉर्टेंट जंग है। अब आज की मीडिया की जंग उतनी इंपॉर्टेंट है शायद उस बाकी जंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी है शायद कुछ लिहाज से उससे भी ज्यादा है, क्योंकि जो मीडिया का तासुर निकलता है आखिर में वही तारीख बन जाती है ना, तो इसमें मीडिया की तारीख में हम तो 4 दिन यही करते रहे पाकिस्तान के लिए टीवी पे मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना, मैं भी और आप भी और हमारे जिस तरह FM 100 है, हमारा रेडियो पाकिस्तान है, हमारी टीवी चैनल है, हमारा सोशल मीडिया है, हमारा यूथ है, हमारी ख्वातीन है, जिन्होंने सबने मिलकर मीडिया पे भी बहुत काम किया, एक तो मीडिया था उसके अलावा जो बाकी कार्रवाई करनी थी वो पाकिस्तान की दिफा के लिए वो सारी आपके सामने है।
5: सर ओवरऑल तो हमने, मैं बात करूं, हम इस जंग को सेलिब्रेट कर रहे थे, यानी कि कहीं पे जंग की सूरत हाल हो तो वो मुल्क डर जाता है, थोड़ी आवाम डर जाती है, मगर यहां पर तो सेलिब्रेशन थी छोटी सतह पे भी बड़ी सतह पे भी। आप देख रहे मिसाइल जहां से लॉन्च हो रहे थे लोग वीडियोस बना रहे थे, वहां पर साथ बैठे हुए थे, वहां पर नारे लगा रहे थे, और फिर इस कौम को यकजा, स्पेशली पाकिस्तानी कौम की अगर मैं बात करूं, हमें चाहे दुनिया कुछ कह दे, मुझे कह दे, आपको कह दे, किसी को कुछ कह दे, जब बुरा वक्त आता है ना, बुरा वक्त नहीं कि क्रुशियल वक्त कह दे या थोड़ा सा नाजुक वक्त कह दे, जब आता है तो हम सब यकजा हो जाते हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने तीक। एक्चुअली तो मैं तो हमेशा एज अ रिफॉर्मर भी हूं, तो मैंने हमेशा कहा है यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान, रिफॉर्म पाकिस्तान, ये मेरे स्लोगन है ब्रिगेडियर नादिर वीर। लेकिन अगर आप अमन में तो यूनाइटेड होना चाहिए आपको उसूलन तो, लेकिन जो जंग का माहौल है या इमरजेंसी है या पाकिस्तान को खतरा है तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कि उस वक्त पूरी कौम जो है हमारी, और ये इंडिया ने ये भी बात अंडर एस्टिमेट की तो उनके तासुर में या क्योंकि वो अपना प्रोपेगेंडा, अंग्रेजी है देवर ड्यूप बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा, यानी जो वो प्रोपेगेंडा करने से करते थे उससे खुद ही बेवकूफ बन गए। प्रोपेगेंडा तो दुश्मन को बेवकूफ बनाने के लिए या किसी और को बेवकूफ बनाने के लिए, गलत इंफॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ना कि अपने आप को बेवकूफ बना ले इंसान। बहरहाल वो देवर ड्यूप बाय देयर ओन प्रोपेगेंडा, वो अपने आप को बेवकूफ बना लिया क्योंकि वो समझते थे कि ये हमला करने से पाकिस्तान बिखर जाएगा, कौम जो पाकिस्तान की है वो तितर बितर हो जाएगी। वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ और हमेशा ऑपोजिट होता है और हमेशा ऑपोजिट होगा, कि ऑपोजिट का मतलब कि पाकिस्तान की कौम एक झंडे, पाकिस्तान के झंडे के नीचे पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे पाकिस्तान के दिफा के लिए। आपने जो बात की सेलिब्रेशन की या बहादुरी की, आप ये देखिए ना कि बेदिया के ऊपर जब पहली बार ड्रोन आए, और ड्रोन नई चीज थी ना पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और जगह तो इस्तेमाल हुए थे दुनिया में लेकिन हमारी तो पहली बार, इससे पुरानी जो जंगी हुई तब तो ड्रोन नहीं होते थे। तो पाकिस्तान के जो बेदिया के जो लोग थे उस इलाके के, मतलब वो घर से निकल आए बंदूकें लेके, शॉर्ट गन्स लेके, राइफल जो भी जिसके पास जो हथियार था,
5: इवन
6: गुलेले, इससे पहले गुलेले भी जो भी था, मैंने कहा जो चाहे किसके पास तीर कमान ही क्यों ना हो, बच्चे हो, उन्होंने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। और इससे पहले के फौज और रेंजर्स आके उनको करते तो लोग खुद निकल आए थे। ये उधर की मिसाल, एक साल उसके बाद जो आगे सिलसिला चला जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो वो भी पता होना चाहिए। ये हमारे मशरकी सरहद पे हुआ, बेदिया पे और जगहों पे, मगरबी सरहद पे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जब अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई और पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, तो चमन के लोग जो हमारे बहादुर पाकिस्तान के बहादुर पश्तून, बहादुर बलोच, हुब्बे वतन, पेट्रियोटिक बलोच एंड पश्तून ऑफ हमारे उस इलाके के, वो निकल आए फौज की मदद करने के लिए और दहशतगर्दों के खिलाफ। तो ये आप देखें ना कि कौम जो है, और इसी तरह कराची के लोग जो हमारे हैं, इसी तरह नॉर्थ के, मतलब के सारे पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के हों, पंजाब के हों, सिंध के हों, बलूचिस्तान के हों, कहीं के किसी इलाके के लोग भी हों और कोई भी हों, तमाम कौम एज वन नेशन, जो नेशन होती है वो आई। इसलिए तो अव्वल तो फौज ही हमारी काफी है इंडिया को लड़ने के लिए, लेकिन फौज के पीछे पूरी कौम पीछे क्या, बल्कि साथ पूरी कौम खड़ी है ना जो आप कह रहे हैं। तो इसके लिए तो यही तो मैं पहले कह रहा था और कहता हूं हमेशा कि ये जो है जंग करना इंडिया के लिहाज से नहायत बेवकूफी है, क्योंकि खाली फौज नहीं है, फौज तो बहुत अच्छी है पाकिस्तान की, लेकिन उसके अंदर कौम जो है ना पाकिस्तान की, उसको भी देख लेना इंडिया के इस कौम ने क्या करना है,
5: क्या करना है। सर कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवान नस्ल के नाम?
6: पाकिस्तानी यूथ को मेरा ये मैसेज है कि पाकिस्तानी यूथ यूनाइट अंडर वन फ्लैग, पाकिस्तान के झंडे के नीचे आप इकट्ठे हो जाएं और एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फौज के साथ और अपने साथ। और ये मैं यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, मैं टॉक्स देता हूं, फ्री टॉक्स देता हूं स्टूडेंट्स को, उधर मैं कहता हूं उनको सोशल, इट इज नॉट सोशल मीडिया बट एआई, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिहाज से बात कर रहा हूं, वो भी पैगाम है उनके लिए कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें मुल्क की साथ वफादारी के लिए इंडिया के खिलाफ और मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, ना कि कोई कंफ्यूजन फैलाने के लिए। और महारत हासिल करें एआई में, फ्यूचर जो है आपका पाकिस्तानी यूथ का एआई में है, टेक्नोलॉजी में है, इल्म में है, ताकि पाकिस्तान का जो जोश है यूथ का, हमारा यूथ बल जाए, हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन यूथ की आर बॉयज एंड गर्ल्स एंड दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट, पाकिस्तानी बच्चे जो जहीन है, हमारी बच्चियां और बच्चे जहीन आपको पता दुनिया में रिस्पेक्टेड है। तो इसलिए इनके पास ये मौका है ताकि पाकिस्तानी कौम ऊपर उठेगी इंशाल्लाह, और हमारी फौज और हमारी कौम इकट्ठे मिलके पाकिस्तान के झंडा पकड़ के मार्च करेंगे फॉरवर्ड, एंड पाकिस्तान विल राइज इंशाल्लाह एज अ ग्रेट नेशन फर्दर।
7: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। टू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
9: ہر شعبے سنگل ریمیڈی کا سفر شروع ہوتا ہے مخصوص ہربل باغات سے، جہاں بڑی احتیاط سے کاشت کی جاتی ہے۔ جرمن سائنس سے نکھرا یہ معیار آپ تک پاکستان میں پہنچاتے ہیں ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو، شعبے سنگل ریمیڈیز، جس پر پاکستان کرتا ہے 75 سالوں سے اعتماد۔
10: ہائر نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر، اس کی آئی او ٹی ٹیکنالوجی فوڈ ایکسپائری نوٹیفکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو دے موبائل ایپ سے کمپلیٹ کنٹرول۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
7: This program is brought to you by
11: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
12: and Har Remittance Par Shandar Inamat Jeetne Ka Mauka Paao, Bank Al Habib, Rishta Bharose Ka,
2: and Bosspel, Machhar Aap Se Dur Rehne Par Majboor,
3: and Rakmi Islamic Digital Bank, Yahan Milenge Real Solutions, Kyunki Rakmi Hai 100% Islamic.
13: facebook.com/fm247365
14: مارکہ حق، ایک سال سچ کے ساتھ، ایک سال عوام کی آواز کے ساتھ۔ مارکہ حق، یہ صرف ایک سال نہیں، یہ عزم، اتحاد اور قربانی کی داستان ہے۔ جب قوم اور محافظ ایک صف میں کھڑے ہوں تو حق کی آواز کبھی دب نہیں سکتی۔ جہاں ہر قدم حق کی جیت اور وطن کی محبت کا آئینہ دار بنا، یہ وہ سفر ہے جس میں عوام کا جذبہ اور محافظوں کی ہمت مل کر بنی ایک ناقابل شکست طاقت۔ پاکستان زندہ باد۔
4: پاک فوج زندہ باد۔

0: 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस। जैसे बस 5 मिनट्स में अपना अकाउंट ओपन करें,
3: फंड ट्रांसफर हो या कोई भी बिल पेमेंट, ऑलवेज ऑन कस्टमर सपोर्ट के साथ,
2: क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक,
3: जो तुम चाहो।
2: डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: एजीएस ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। एजीएस ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: किसने कहा था

जीते 20,000 रूपए। बस हसकरी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रूपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: जीते 20,000 रुपए। बस अस्करी मोबाइल ऐप से कम अज कम 2 बिल्स की पेमेंट और ऐप को रेट करें और हर 15 दिन बाद हासिल करें 20,000 रुपए जीतने का शानदार मौका। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस उतने ही ज्यादा जीतने के मौके। शराइत जवाबित लागू है। अस्करी बैंक।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉस्पेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉस्पेल करेगा घंटों फाइट। मॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: AGS ट्यूबलेट। दिखाए काम AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
6: एंड हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओ।
7: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: एंड बॉस्पेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
8: एंड रकमी इस्लामिक डिजिटल बैंक, यहाँ मिलेंगे रियल सॉल्यूशंस, क्योंकि रकमी है 100% इस्लामिक।
9: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365।
10: मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज।
11: हम छाए तूफानों आंधियों की तरह, हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
12: पाक फौज जिंदाबाद।

ये वतन है तो सब कुछ है, ये वतन नहीं तो हम भी नहीं। जैसा कल डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि हमने सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा जो किया है 5-10 या 15% की है, और अगर हम इसको, मैं इसको ओवरऑल कहता हूँ 10% हमने 10% अपनी जो कैपेबिलिटी थी उसको शो किया है, अगर 90% वो शो करते तो फिर किधर से किधर बाहर चली जाती। आज जैसा वजीर दाखिला ने भी आज के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मार के हक में बहुत अहम टारगेट्स हमारे पास निशाने पर मौजूद थे, मगर अमरीकी सदर ने भारत को बड़े नुकसान से बचाया। मीन वाइल ब्रिगेडियर गजनफर से हमारी बात हुई थी प्रोग्राम के आगाज में, और हमारे साथ शामिल गुफ्तगु थे, उनसे भी गुफ्तगु हुई कि हमने जब उन पर अटैक किया तो उनका आर्मी चीफ बैठा होता वो हमारे बिल्कुल निशाने पे था, मगर हमने उसको निशाना नहीं लगाया, हमने उसी जगह के साइड पे जो जगह है और बंकर्स वगैरह उनको अटैक किया, जस्ट टू बताने के लिए कि जनाब ये चक्कर है, अगर आपने ज्यादा मसला किया तो लेने के देने आपको पड़ेंगे। और ये हमारी पाकिस्तानी कौम की सबसे प्यारी बात है कि हम यकजा हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं भी पाकिस्तान हूँ तो भी पाकिस्तान है, और हम सब पाकिस्तानी हैं। बी आर प्राउड पाकिस्तानी। रिमेम्बर मोहम्मद अती खान कराची। थैंक यू वेरी मच अली भाई, अल्लाह ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। रोशनी शहर कराची, जिंदा दलाने शहर लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी इस्लामाबाद एंड अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज मी अती खान। तकरीबन हमारे पास 6:55 पे, नहीं तकरीबन हाँ कह सकते 6:55 पे हमारे पास अजान मगरब है फ्रॉम इस्लामा स्टेशन, बाकी स्टेशन अपने वक्त के मुताबिक नमाज मगरब अदा करें, फिर उसके बाद मुलाकात होती है राउंड 7:10 पे हम वापस आएंगे, ठीक है।

0: आराम, AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: हर श्वाबिस सिंगल रेमेडी सख्त तरीन क्वालिटी चेक से गुजरती है ताकि खालिसपन और असलियत बरकरार रहे, क्योंकि जब बात सेहत की हो तो समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। श्वाबिस सिंगल रेमेडीज जर्मनी और हमीद जर्नल होमियो पाकिस्तान 75 साल से काबिले एतमाद।
2: हायर का नया लो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
2: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।

0: जज्बा है, 65 में भी था और आगे भी चल के आता रहा। लेकिन अभी जो है तमाशा जो मैंने देखा कि मैं रिटायर हो चुका था, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि दुश्मन के ड्रोन हमले आ रहे थे और सब कुछ हो रहे थे, लेकिन हमारी आवाम छतों पे चढ़ करके अपनी जान की परवाह किए बगैर नारे लगा रही थी और लोगों को जो है वरगला रही थी और उनको जोश और जलवा दिखा, सॉरी जज्बा उनका उभार रही थी। तो ये ऐसी कौमों को शिकस्त देना किसी
1: नामुमकिन है
0: दुश्मन
1: सर, नामुमकिन सब। वही आपने ड्रोन्स की बात की तो आई स्टिल रिमेम्बर जो फुटेजेस हमने देखी पिछले साल कि लोग मतलब इवन गुलैल बंदूक किसी के पास है, किसी के पास कोई तीर है, कोई छुरी है, जिससे भी वो ड्रोन देखता था इवन पत्थर उठा उठा के उसे मार रहे थे। तो इस जज्बे को यानी वेरी फ्रेंकली हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। ये जंग का जब माहौल होता है किसी मुल्क में तो एक टेंशन का माहौल होता है। मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा देखा, हूं काफी छोटा बट मैंने अपनी जिंदगी में पहली मरतबा देखा कि ये हम इसको एज अ फेस्टिवल ले रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, आए जी देखे हम भी लड़ेंगे, हम शाना बशाना खड़े। ये कहीं दुनिया में और नजर नहीं आता एक्सेप्ट पाकिस्तान।
0: बेटा यही तो बात है, क्योंकि 765 में भी दुश्मन ने रात के अंधेरे में लाहौर और सियालकोट की तरफ हमला कर दिया था। लाहौर ही मुझे याद है कि वो कंधों पे बेलचा लेकर के हॉकी स्टिक लेकर के नौजवान चल पड़े थे कि हम भारत का रास्ता रोकेंगे, और यही डॉग फाइट्स उस वक्त होती थी। आज अब तो पीवीआर का जमाना है कि दुश्मन को नजर नहीं आता, डॉग फाइट नहीं होती है, लेकिन उस वक्त डॉग फाइट लाहौर की शहर के ऊपर हो रही थी और लोग बसंत की तरह से छतों के ऊपर चढ़ करके वो कांटा के नारे में लगाते थे जब एक दुश्मन का तैयारा नीचे मार गिराया जाता था। और मुझे अभी देखकर खुशी हुई कि अभी भी वही जज्बा है, उससे बढ़कर के शायद जज्बा है, क्योंकि सोशल मीडिया और ये इस किस्म की चीजें जो है वो आगे वो लोगों को एहसास दिला रही थी कि ये इस वतन को दिफा करना जो है वो हम सबका फर्ज है।
1: एग्री सर, ये चीज समझ से बालातर है, हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन हमारा टेक्नोलॉजी ओवरऑल, उनको ये मतलब मैं 2016 की बात करूं, 65 की बात करूं, 2019 की बात करूं या 2025 की बात, इतने बेअकल हैं कि उनको अकल है ही नहीं कि जिसके साथ वो लड़ रहे हैं वो चाहे कुछ भी कर ले उसको, क्योंकि हमारे पास वो जज्बा है कि हमने अगली जिंदगी शहादत की गुजारनी है, ये उनके पास जज्बा नहीं है। भैया मुस्लिम हमारे पास ये जज्बा है, तो मैं बिल्कुल इतनी बेअकल हो गए, माजरत के साथ लफ्ज यूज कर रहे हैं, इतनी बेअकल हो गए कि बारी बारी वो यही हरकतें करते हैं।
0: नहीं देखो, बात यह है कि जब आपके पास ताकत आ जाती है ना, जब आपके पास हथियार आ जाते हैं, तो आपके अंदर एक गुरूर आ जाता है और एक घमंड आ जाता है, और ये जो गुरूर अंधा कर देता है पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया कि शुरू दिन से हम तो एक हाथ पीछे बांध करके अखाड़े में उतरते हैं कुश्ती के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन यही चीजें हमारे काम आई। जितने हम पे सैंक्शन लगे, जितनी पाबंदियां लगी, हमने कसम खाई कि हम अपने पांव पे खड़े होंगे और हम ऐसी चीजें बनाएंगे, ऐसे इजादात करेंगे और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हम दुश्मन की अददी बर्तरी को जो है वो उसको निगेट कर सके। तो आप जो बात कर रहे हैं 2016 2019 के बाद से खास तौर पे हमने जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाए, हमने साइबर फोर्स बनाई, हमने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, हमने जो है इंटरनेट सर्विसेज के साथ साथ जो है सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप किए, क्योंकि ये जो आप बियॉन्ड विजुअल रेंज की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये नहीं था, इसमें एक पूरी एक किल चेन बनाई गई थी जिसको के बताया गया था और हमने दुनिया को बता दिया कि हमने मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी तैयार की है। मल्टी डोमेन क्या होती है कि जितनी चीजें हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी शामिल, जिसमें आपके सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन, जिसमें आपके इंट्रानेट है और जो जहाज के अंदर लगे हुए ऐसा रेडार्स थे, ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मैं बात कर रहा हूं और J-10C की, और उसके अलावा जो मिसाइल सिस्टम थे उनके अंदर भी जो सिस्टम थे उन सबको हमने मजबूत किया हुआ था कि दुश्मन को सबसे पहले हम उसके ऊपर नजर रखें कि वो कहां से आ रहा है। हमारे एवैक्स, हमारे रेडार्स और हमारी सैटेलाइट सॉफ्टवेयर हमें ये बता रही थी कि दुश्मन क्या कर रहा है, लेकिन जब हमने हमला किया तो हमने उसको टोटली जो है ना जैम कर दिया, उसको हमने अंधा कर दिया, बहरा कर दिया और उसको पता ही लगा कि उसके साथ हुआ किया। सो दिस इज नॉट जस्ट द एयरक्राफ्ट, नॉट जस्ट द पायलट, बट द एंटायर सिस्टम, और इसमें पूरी कौम शामिल है और वो यंग बच्चे शामिल हैं जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार किया।
1: सर कथा कलामी की बहुत माफी, 90 सेकंड एक छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद हम दोनों गुफ्तगू जारी रखते हैं। It's 7:30 PM. This time check is brought

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: शिफा वहाँ से शुरू होती है जहाँ कुदरत मुस्कुराती है। श्वाब सिंगल रेमेडीज, कुदरत के अनमोल खजानों और जर्मन महारत का शाहकार, जिन्हें आप तक 75 सालों से पाकिस्तान में पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट, मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।

0: फ्री नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
1: FM 24/7 365.
2: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ. मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है. जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती. जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत. पाकिस्तान जिंदाबाद.
3: पाक फौज जिंदाबाद.
4: वो समझते हैं कि ताकत और मकारी से हम हर चीज जीत लेंगे, लेकिन हमारे पास जो है वो एक ही रास्ता है. वो ये है कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजिकली इतना साउंड करें और हम ऐसी तदबीरें इख्तियार करें जिससे कि हम अददी बर्तरी को और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी जो दुश्मन की है उसको हमने निगेट करना है, उसको ऑफसेट करना है और सबसे बढ़ करके हमने उसको शिकस्त फाश देना है. और जो हमने पिछले साल जो कुछ कर दिखाया, न सिर्फ हमने भारत को जो है वो हैरान कर दिया, उसको सरप्राइज दी, सारी दुनिया को हमने सरप्राइज दी और इसी वजह से हमारी साख बन गई. लेकिन अब ये है कि हम वी कैन नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरेल्स. तो हमने आगे रहने के लिए मजीद मेहनत करनी है, मजीद जो है टेक्नोलॉजी जो है उसको जो है आगे बढ़ाना है ताकि हमारा जो एज जो हमने गेन किया है वो बरकरार रहे.
5: वेरी गुड सर, बिल्कुल सही आपने फरमाया. सर आपने भी माशाल्लाह जेट फाइटर्स उड़ाए होंगे. जब ऐसी सूरत हाल होती है, जंगी सूरत हाल, तो उस वक्त जब एक पायलट जहाज के अंदर जाता है तो वो तो डेफिनेटली जज्बे से सरशार होगा ही होगा, मगर मेंटली तौर पे वो कहां पर होता है उस वक्त, वो क्या सोच रहा होता है? कुछ आगाही देंगे हमें इस हवाले से, कुछ अपने एक्सपीरियंस से?
4: देखो बेटा, बात यह है कि एक ही जो है ना वो नस्बुल हैत होता है, वो है कि आपने अपने आप को फिजिकली, मेंटली और टेक्नोलॉजिकली जो है वो साउंड रखना है. और इसका जो है निमुल बदल और कोई नहीं है सवाई इसके प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस. अब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतने ज्यादा मिशंस कर सके, तो इसीलिए एयर सिमुल हैं जिसमें आप सिमुलेट करते हैं और जमीन के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं और रियलिज्म उसमें होती है. और जब भी हम फ्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी एक बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है. और कंपटीशन ये होता है कि आप एक दूसरे से सबकत ले जाएं, लेकिन वो सबकत ले जाना जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन होता है, क्योंकि असल चीज ये है कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं मेंटल एजिलिटी के लिए और उसके अलावा ये कि सुपीरियरिटी के लिए. तो अभी आप जो जज्बे की बात कर रहे हैं तो उसमें अब चीजें जो है आगे इतनी एडवांस हो गई हैं कि आपके पास सोचने का मौका नहीं मिलता है. इट हैज टू बिकम योर सेकेंड नेचर. तो आप इतनी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एवरी क्या कहना चाहिए इवेंचुअलिटी. क्योंकि आप ये भी सोचें कि एयर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और जहाज एक टेक्निकल चीज है. जमीन के ऊपर आप कार चला रहे हैं, आपकी कार स्टॉल कर जाए, आप साइट के ऊपर खड़ी कर देते हैं. जहाज जब फिजा में फ्लाई कर रहा है तो कोई और मुश्किल आ जाए कोई हो, तो आपके पास कोई और जो है चारा नहीं है सवाय इसके कि आप एक्शंस लें. तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है. और आपको मतलब इट्स नॉट एन इजी करियर, लेकिन मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अब चीजें ऐसी आ गई हैं कि यू हैव टू बी यू नो ऑन द टॉप ऑफ थिंग्स. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, हमारे नौजवान और बल्कि अब तो बच्चियां भी माशाल्लाह शामिल हैं आर्म फोर्सेज में, तो दे आर ऑल गेटिंग देयर एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ.
5: सर इसका मतलब है सोचना नहीं है उस वक्त, अमल करना है, यानी कि आप सोच से भी अगला कदम उठाएंगे कि आपने अमल कर दिया बस.
4: बेटा वो आपकी सेकंड नेचर बन जाती है, इट बिकम्स योर इंस्टिंक्ट. यू प्रैक्टिस सो मच, यू प्रैक्टिस सो मच, यू प्रैक्टिस सो मच. हर मिशन से पहले ब्रीफिंग होती है, हर सिनेरियो को देखा जाता है कि ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है, अगर ये हो गया तो क्या होगा, ताकि जब आप फिजा में जाएं तो आपके पास सोचने का टाइम नहीं, बिकॉज यू आर फ्लाइंग एट द स्पीड ऑफ ट्वाइस three times the sound of the speed of sound. Speed of sound kya hoti hai? 760 kilometers per hour. तो अगर आप डबल ट्रिपल उसके फ्लाई कर रहे हैं, उसके अलावा ये है कि अगर आप मनूवर्स कर रहे हैं तो आप जीज पुल कर रहे हैं. जीज का मतलब ये होता है कि इस वक्त आप जमीन पे खड़े हैं तो आप 1G पुल कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल. लेकिन जब आप एयर में मनूवर्स कर रहे होते हैं 2G 3G 9G तक आप चले जाते हैं, जिस जो कि आपकी फिजिकल इंड्योरेंस की बिल्कुल लिमिट्स पे जाती है. तो अब उन सब में अगर आपको सोचना पड़े कि अब मैं क्या करूं, उसका वक्त नहीं है. सो दैट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस and with briefing and with preparation. So isliye it has to become your second nature ki instinctively aap sahi action le.
5: Sir, koi paigham dena chahenge Pakistani qaum ke naam, especially naujawan nasl ke naam? 60% abadi hai hamare is Pakistan ki.
4: Beta, hamari jo strength hai na wo yahi naujawan hai. Lekin ek cheez main aapko batana chahunga ki ab jo jung aa rahi hai ya ho rahi hai, ये एक इसे हाइब्रिड वॉरफेयर, और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में जो है प्रोपोगंडा और इंफॉर्मेशन जो है उसका बहुत बड़ा असर और रसूख है. और ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत आगे चला गया है, और भारत जो है इतना मकार हमारा दुश्मन है कि उसने जो है तरह तरह की चीजें डेवलप की हुई हैं. बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं और आ चुकी हैं, जिस तरह वो क्रोनिकल्स थे और ये थे. तो उसका एक नैरेटिव है, वो कोशिश करता है कि हमारे जहनों को परागंदा करे. देखिए, जब मैं स्टाफ कॉलेज कर रहा था तो हमें एक चीज पढ़ाई गई थी कि दुश्मन अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसकी कोशिश ये होगी कि आपकी हुकूमत और आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके ऊपर आपका जो है एतमाद खो बैठे, और अगर ऐसा होगा तो फिर आपके जहन के ऊपर वो हावी हो जाएंगे. और दूसरे ये कि अगर आपको याद हो, सुषमा स्वराज उनकी एक मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन थी, हाँ अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, उन्होंने एक दफा कहा था कि हमें पाकिस्तान को फिजिकली कॉन्कर करने की जरूरत नहीं है, हम उनके माइंड्स के ऊपर जो है वो कब्जा कर लेंगे अपनी फिल्मों के जरिए, अपने मीडिया के जरिए और अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए. तो अब हर बच्चे के हाथ में एक सेल फोन है जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन आ रही होती. तो आपने सबसे पहले जो है नौजवान नस्ल को, मैं खासतौर पर कह रहा हूं कि जो फेक न्यूज है और जो प्रोपेगेंडा है और जो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ये एहसास दिला रही है कि खुदा ना खासा आपकी फौज या आपकी हुकूमत जो है वो आपका साथ नहीं दे, प्लीज डोंट फॉल इन दैट रूम. नंबर वन. नंबर टू कि आप इंतजार नहीं करेंगे हुकूमत या फौज या ISPR या वो उसका प्रोपोगंडा का तोड़ निकालेगी, आपको काउंटर नैरेटिव खुद बनानी है. आपके हाथ में ये जो हथियार है सेल फोन का और सोशल मीडिया का, तो आप जवाब दें. लेकिन जवाब कैसे आप दे सकते हैं कि अगर आप थोड़ी सी अपनी भी रिसर्च करें. डोंट फॉल फॉर एनीथिंग. इवन जो फौज भी अगर आप कह रही है, जो मैं भी कह रहा हूं, मेरी बात पे आप यकीन नहीं करें, आप खुद अपना जो है रिसर्च करें. हर चीज, सारे टूल्स मौजूद हैं, और हक और सच्चाई आपके हाथ में होगी तो आप हक और सच्चाई का पैगाम दुनिया को और अपने हमवतनों को दे सकेंगे, और दुश्मन के हर वार को आप जो है वो उसका मुकाबला करने के लिए तैयार.
5: इंशाल्लाह. सर, इस पाकिस्तानी कौम की जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आज आपसे, कुछ भी कर ले, चाहे दुनिया कह दे, पॉलिटिकली वैसे कह दे, भाई बहुत इतजाद है, सब कुछ है, मगर जब भी इस कौम को ललकारा गया है, 65 देख लें, 2016-19, 71, 2025 देख लें, हम सब यकजा हुए. दुनिया इधर की उधर कर ले, इस पाकिस्तानी कौम की खासियत और अल्लाह ताला का कुछ खास करम है हम पे कि चाहे हम जितना भी कह दें कि जी हम बटे हुए हैं, सब कुछ है, मगर जब भी कोई बुरा वक्त है, किसी ने मैली आंख से इस मिट्टी माँ को देखा है, तो हम सब यकजा हुए. एक बड़ा प्लस पॉइंट है हमारे पास, पाकिस्तानियों के पास भी है, पाकिस्तानी वेरी फ्रेंकली, अल्लाह ताला का कोई खास ही करम है हम लोगों पर.
4: बेटा, अल्लाह ये करम रखे.
5: आमीन आमीन
4: आमीन. अगर आप अपने इर्द गिर्द देखिए, आप फलस्तीनियों को देखिए, कश्मीरियों को देखिए कि वो किस तरह से जो है आजादी के लिए
5: लड़ रहे,
4: जो है वो लड़ रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, जस्तजू में हैं. लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक आजाद मुल्क मिल गया, लेकिन इस आजादी को हमने बचा के रखना है, और इसको बचाने का तरीका यही है कि हम यकजा हो जाएं और एक बंद मुट्ठी की तरह हों, क्योंकि एक बंद मुट्ठी जो है वो बहुत भरपूर तरीके से जवाब दे सकती है. तो कौम जो है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि मुझे वो नारा याद आने लगता है, क्या नाम था उनका, जिन्होंने वो नगमा गाया था, ए दुश्मन दी तूने किस कौम को है ललकारा, हुए है सारे कौम आज सफारा. तो एग्जैक्टली यही है, और अल्लाह ये कायम रखे, तो मिल्लत को कायम रखे, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे, और आप सबको कायम रखे.
5: सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको. اور صحت والی زندگی دے, مسکراتے رہے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے. آپ لوگ بزرگ موجود ہیں, بڑے موجود ہیں, تو ہم بہت ہی سکون کی زندگی اس پاکستان میں گزار رہے ہیں.
4: الحمدللہ,
5: بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائرڈ گروپ کیپٹن سلطان محمود حالی صاحب, ایئر فورس سے تعلق تھا, اور جیسے انہوں نے گفتگو کی ابھی میں ان کا جو ملی نغمہ انہوں نے لکھا تھا, اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, وہ بھی پلے کرتا ہوں, مگر کیا کروں, بریکس میرے جان نہیں چھوڑی. آپ سن رہے مارکہ حق کی خصوصی نشریات, میرے ساتھ محمد عتیق خان کے ساتھ, لاہور, کراچی, اسلام آباد, حیدرآباد, ملتان, ہریانہ, جہلم, گجرات, ایبٹ آباد, پشاور, اور نہ جانے کہاں کا, اکراس دا ورلڈ, www.fm100pakistan.com کے تھرو ہماری ایپ بھی موجود ہے, اور ایف ایم ڈائل پہ تو ہیں ہم نمبر ون, دا سپر ون اینڈ دا بگ ون, اینڈ آف کورس آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن. ایک چھوٹی سی بریک, آئی ول بی رائٹ بیک, ڈونٹ گو اوے, ڈونٹ ٹچ دا ڈائل.
1: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
6: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
7: Hired No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
8: Is awaaz ne cheen liya hai sukoon. To le aaye Mosspel. کیونکہ ڈے ہو یا نائٹ, موسپل کرے گا گھنٹوں فائٹ. موسپل, مچھر آپ سے دور, رہنے پر مجبور.
7: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر, جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں, اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی, جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
1: FM 24/7 365.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
10: مارکہ حق, عوام کا جذبہ, محافظوں کی طاقت.
3: پاک فوج زندہ باد.
11: حیدرآباد, راہیب یار خان, ملتان, ایبٹ آباد, گجرات, جیلم, اکراس پاکستان. دس از ایف ایم 100.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga
1: aur bhul ja. इस आवाज ने छीन लिया है सुकून, तो ले आए मॉसपेल, क्योंकि डे हो या नाइट मॉसपेल करेगा घंटों फाइट। मॉसपेल, मच्छर आपसे दूर, रहने पर मजबूर।
0: दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100। रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना। इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए। ट्रैफिक कानून की पाबंदी कीजिए।
2: बैन अलावा सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म की जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: facebook.com/fm247365
0: मार्का हक, एक साल सच के साथ, एक साल आवाम की आवाज के साथ। मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अजम, इत्तेहाद और कुर्बानी की दास्तान है। जब कौम और मुहाफिज एक सफ में खड़े हों तो हक की आवाज कभी दब नहीं सकती। जहां हर कदम हक की जीत और वतन की मोहब्बत का आईनेदार बना, ये वो सफर है जिसमें अवाम का जज्बा और मुहाफिजों की हिम्मत मिलकर बनी एक नाकाबले शिकस्त ताकत। पाकिस्तान जिंदाबाद।
5: पाक फौज जिंदाबाद।

0: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
1: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 247 365.
1: मार का जब कौम बने एक आवाज।
4: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
1: पाक फौज जिंदाबाद।

0: TGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: पाक फौज जिंदाबाद।
3: मार्का हक, ये सिर्फ एक साल नहीं, ये अहद की तकमील है। एक ऐसा सफर जहां हर आजमाइश ने कौम का हौसला बढ़ाया और हर चैलेंज ने कौम को मजबूत बनाया। जब अवाम का यकीन और मुहाफिजों की कुर्बानी साथ हो तो तारीख बदलती है और हक सर बुलंद होता है। मार्का हक, एक साल जद्दोजहद का, एक साल फतह का, एक साल इत्तेहाद का।

0: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना न भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे डॉक्टर जाकिर अलवी, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फाउंडर मेंबर पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, साउथ सिटी हॉस्पिटल, कराची। प्रोग्राम का मौजू होगा गिलहड़ या गोइटर, जिसकी वजह से क्या आप खतरे में हैं? सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 7 मई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
1: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो, तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM247365

0: और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: FM247365

0: कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: FM 24/7 365 FM 24/7 365
2: मार्का हक, जब कौम बने एक आवाज।
3: तूफानों आंधियों की तरह हम टूटे दुश्मनों पे बिजलियों की तरह।
2: पाक फौज जिंदाबाद।

दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी। सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून। दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक। I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it.

닥쳐가요 얼추 포가요 왜 닥쳐가요 얼추 포가요 왜 닥쳐가요 얼추 포가요 왜 닥쳐가요

वेलकम बैक सुने हो कन्हैयारी आपने सुना है ना हो गया आपको आया होगा पसंद मैसेजेस कर रहे हैं आपके चाय स्पेस आपका नाम आपका मैसेज और उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर तो देखते हैं 3636 पर सबसे पहले किसने फीता काटा है लेकिन उससे पहले सवाल तो आज आपसे रिडल पूछते हैं बहुत ही आसान सा हाथ में डंडा ना तलवार बताओ कौन सा है कि वो चौकीदार हाथ में डंडा ना तलवार बताओ वो कौन सा है चौकीदार ये आपने बताना है मुझे 3636 पर बहुत ही आसान सा है यार लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बताया होगा आगे बढ़ते हैं जनाब सबसे पहले फीता काटा है सना जान ने और कहती है अस्सलाम वालेकुम सबको सलाम अरे ये क्या लिखा हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सलीम मेमन है क्योंकि चुटकुला आ गया है बीवी अपने शौहर से तुम आज बर्तन धो लो मेरा दिल नहीं कर रहा है तुम्हें 200 रुपए दूंगी शौहर मैं तुम्हें 500 दूंगा तुम धो लो बीवी मैं 1000 दूंगी शौहर मैं 2000 दूंगा बीवी ने कहा 2000 शौहर ने मुंह बना के 2000 दे दिए पीछे से देवर बोला भाभी बर्तन सारे धो गए धुल गए हैं अब दे मेरे 200 रुपए भाभी बोली 500 ले लो आज समोसे साथ और कॉफी भी पियेंगे भाई बहुत बढ़िया चुटकुला आ गया पहले ही ये समझदार खवातीन की निशानी है आसिफ अली कहेंगे क्लिफ्टन से सोने हो आपको और सब सुनने वालों को सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद अली कह रहे हैं शेरशाह से नदीम भाई कैसे हैं सॉन्ग सुनवा दीजिए दिल मेरी ना सुने आतिफ असलम डेडिकेट कर दीजिएगा ऑल लिसनर्स को कोशिश करेंगे पक्का आ रहा नहीं है आसिफ भाई कह रहे हैं फर्स्ट सॉन्ग इज आउट क्लास आए लज्जी क्या बात है भाई पसंद आया मेरे भाई को ये अच्छी बात है अच्छा जनाब आज आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 111111100 पर वो भी नालो नाल यानी कि साथ ही साथ यानी कि समझ रहे हैं ना आप हैं जी सलाम कैसे हैं वाले साहब चाची को और संजू को और सबको अस्सलाम वालेकुम कह रही है जरीन नूर कैसी हैं जरीन नूर खैरियत से हैं आप आज बहुत दिनों के बाद आई हैं जिंदगी कह रही है जिंदगी साथ है कि कैसे हैं बहुत दिन से सुन रही हूँ जिंदगी आप सुन रही हैं और हमें पता ही नहीं कैसी जिंदगी है आप वैसे आपका नाम किसने रखा बड़ा खूबसूरत नाम है आपका तो जनाब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप मुझे सारे साथ कॉल भी कर सकते हैं 111111100 पर लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं है कल तक तो फोन नहीं चल रहा था अभी चल रहा है या नहीं चल रहा इसका पता नहीं है तो इसका पता करते हैं और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक कितने गया ट्रैक ये रहा ट्रैक और जिंदगी ये हम आपको डेडिकेट करते हैं क्योंकि इस ट्रैक का नाम भी जिंदगी है एलो पढ़ो

वेलकम बैक आएंगे सुने हो आप सबको चन मेरे मकना सबको सलाम फ्रॉम अब्दुल खादिर अब्दुल करीम एंड अब्दुल हफीज साहब माशाल्लाह से चारों सुन रहे हो क्या बात है भाई क्या बात आयशा मीर कह रही है कि नदीम आपको और तमाम लिसनर्स को प्यार भरा सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरे ख्याल में कहा गया इनका मैसेज भाई आयशा का या जी कह रही मेरे ख्याल में कुत्ता पहेली का जवाब है अब आप बताएं कुत्ते के दांतों में आप डंडा भी फंसा सकते हैं तलवार भी फंसा सकते हैं वैसे आजकल जो है कराची की गलियों में चौकीदारों की जरूरत नहीं है लोग कुत्ते पाल रहे हैं हमारा कुत्तों की बात कर रहा हूं मतलब PCHS में हमारा ऑफिस है और यहाँ पर आप किसी भी गली में चले जाएं पूरी की पूरी फौज है ये गली बाइक चलाना मुहाल हो जाता है गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं भौंक रहे होते हैं भरभोर तरीके से अब कोई भी अनजान बंदा जो है वो उसका गुजर होगा तो भौंकेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे लेकिन लोगों को इनकी आवाज की इतनी आदत हो चुकी है कि भौंकते हैं तो भौंकते रहे चोर ने अपना काम करके फिर भी चले जाने यानी कि समझेंगे ना आयशा हैं जी हैं जी खैर जी आपका जवाब हमने नोट कर लिया है इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में और उमर बाप के मैसेज हो गए हैं और करम हाँ बिल्कुल करम लिखा हुआ करम बलोच मैं आपका छुपा रुस्तम सिंगर हूँ वाह वाह वाह आज गाना सुनाऊं वादा सही रात गुजर गई अफसाना कहते कहते कौन सा अफसाना कहते कहते अगर आप ने गाना नहीं चलाया तो कोई बात नहीं दो बार फरमाइश कर लूंगा अच्छा जी वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि एक गाना वो सुनना चाह रहे थे तो लेकिन वो गाना सही मैं चला नहीं सकूंगा लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके लिए ये गाना चला दूं मानूर कह रही है सलाम बाब कैसी हो मानूर संगा खई क्या हाल है आपके बाबू शाह फारूक का गाना अगर पख्तो का हो जाए तो उर्दू पश्तो मिक्स हो जाता वैसे ज्यादातर वैसे उसका स्टाइल भी खूब है यार शाह फारूक का उसका अब नकल उतार के आपको दिखाएगा और कह रही हैं कि मिक्स सॉन्ग प्ले कर दें बाबू क्या शादी करना जरूरी है मानूर बिल्कुल जरूरी है अच्छा कुछ लड़कियां ऐसी हैं इस हवाले से मैं बात जरूर करूंगा एक हमारी और बड़ी प्यारी सी लिसनर यहां पर होती थी अभी भी गाहे बगाहे आती हैं जिनको मैं कहता था बे आ गई है यानी कि कायनात उनका नाम था और वो भी हमें मैसेजेस करती थी और आपकी तरह के ख्यालात रखती थी कि शादी क्या करना जरूरी है नहीं करनी मैंने शादी लेकिन उनको कन्विंस किया हमने आपको भी करेंगे बच्चा शादी बहुत जरूरी होती है और खुसूसी तौर पर ये जो यंग लड़कियां हैं ना इनके अंदर ये अजीब सा सीन आ गया है भाई खुसूसी तौर पर जो पढ़ लिख जाती हैं उनके अंदर भी ये चीज बहुत ज्यादा है कि जी शादी कर लेंगे हम किसी के वो थोड़ी हैं ताबे थोड़ी हैं खुद कमाते हैं खुद खाते हैं भाई ये अजीब सी चीज आ जाती है अंदर एक तो ये भी आ जाता है और दूसरा जो वर्किंग गर्ल्स या वुमेन्स नहीं है मतलब जो काम नहीं करती हैं जॉब वॉब नहीं करती हैं तो घरेलू खवातीन लड़कियां जो हैं उनमें भी होता है कि शादी करने की जरूरी है बस नहीं मान रही होती हैं तो बच्चा ऐसा नहीं करना देखो शादी करना तो जरूरी है हमारे दीन में भी है ये ठीक है ना और उसके बाद आज नहीं तो कल करनी है लेकिन इसमें जो सबसे काबिल गौर जो बात है वो ये है कि बच्चियों और बच्चों की लड़कों का तो खैर सिलसिलागार इसमें शामिल नहीं करेंगे लेकिन लड़कियों के साथ क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़ी हैं उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक उम्र होती है ठीक है ना हमारे दीन में भी उस उम्र का जिक्र किया गया है ठीक है ना तो उस उम्र में जो है वो शादी हो जानी चाहिए
कुछ भी हो जाए हो जानी चाहिए, उसकी बहुत सारी वजूहात है। वो अगर बताना शुरू करूंगा तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारी वजूहात है, दीनी भी और दुनियावी भी, समझियो मेरी बात को। तो जो चीज हमने कल करनी है वो आज क्यों ना कर लें, जो उम्र का तकाजा है। क्योंकि फिर वो जब उम्र निकल जाती है तो उसके बाद फिर वालिदैन की परेशानियां जो है वो बढ़ जाती हैं, फिर वो रिश्तों का जड़ा है ना वो बड़ा मसला होता है। रिश्तों का मसला तो खैर जब उम्र शादी की उम्र होती है उसमें होता है वालिदैन को के पसंद का या देखने अच्छा रिश्ता जो है वो देखने की तलाश में हर माँ बाप चाहता है कि भाई बेटी की शादी अच्छी जगह पर हो, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा जहन बनाओ बच्चा, अगर तुम्हारे जहन में नहीं है तो एक उम्र होती है और उस उम्र में जो है वो शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसी उम्र के दरमियान में देख दाग कर, यानी कि समझ आएंगे ना आप, देख दाग कर शादी करनी चाहिए। और हमारे दीन भी यही कहता है, बस इससे ज्यादा और नहीं कहेंगे हम कुछ। आसिफ कह रहे हैं कि सर हम किसी भी हाल में और किसी से भी खुश नहीं होते, सब ओके ठीक है। ये बात भी आपकी सही है किसी हद तक। किसी इंसान किसी हाल में खुश नहीं होता, इंसान की बात हो रही है। और पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की बड़ी वजूहात में रुपए की कदर में कमी है, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा, दरामदी अशिया महंगी होना है, रोजगारी और कम आमदनी शामिल है। इसी वजह से एक तबका ऐसा भी जिसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है और वो बुनियादी जरूरियात पूरी करने में मुश्किल महसूस कर रहा है। ये नौरीन का मैसेज है। देखिए ये रुपए की कदर कम क्यों हो रही है समझने की बात है। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो हमारी इस आवाम को नजर आ रहा होता है ना बस वही सही है, उसके पीछे जो भी चीजें हैं वो उनको नजर नहीं आ रही होती हैं। जो नजर नहीं आ रहा तो बस वो सही है, जो नजर नहीं आ रहा वो सही है और जो नजर आ रहा है वो गलत है। तो रुपए की कदर जो है आलमी मंडी में कम हो रही है ये किसी को नजर नहीं आ रहा, ना किसी को इससे सरोकार है। और इसका जो नुकसान हो रहा है ये हमारी सोचों से भी बढ़कर है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर इस हवाले से मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो, कि अगर अभी भी शऊर तो बेदार काफी हो चुका है हमारी आवाम का, लेकिन अभी भी अगर शऊर बेदार होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहे तो इसके नुकसानात जो है ना वो अनकरीब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमें देखने पड़ेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट का इंपोर्ट का जो हाल है, इंपोर्ट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही है लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो हो ही नहीं रही, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता ये रेशो गिरे जा रहा है। आज से अगर तकरीबन आप 30 साल पहले अगर आप चले जाएं तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट जो थी वो बहुत बेहतरीन किस्म की एक्सपोर्ट थी और काफी कुछ एक्सपोर्ट होता था पाकिस्तान से, लेकिन अब जो है वो सिलसिलाकार समझ लीजिए कि उससे 70-80 गुना जो है वो कम हो चुका है, बढ़ने की बजाय कम हो गया है, ये सोचें। और रुपए की कदर के हवाले से अगर आप बात करें तो आज से इसी तरह 25-30 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूं, अभी की बात नहीं बता रहा, तो आप 25-30 साल पहले अगर देखें तो रुपए की जो कदर थी, यानी कि बांग्लादेश का जो टका है वो पाकिस्तान के रुपए की कदर उससे ज्यादा थी, इंडियन करेंसी से ज्यादा थी, अफगानिस्तान की करेंसी से ज्यादा थी, श्रीलंका की करेंसी से ज्यादा थी। मगर इस वक्त जो है इन तमाम मुल्कों से बहुत कम है। हाँ बाबू पहले का जवाब, अच्छा जी ये हमारी महानूर ने जवाब दिया।

वेलकम बैक कहेंगे मार्जन मार्जन मार्जन ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होएगा। अच्छा बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। उमर बाप कहे हैं ओके मेरी तरह बोलो प्लीज मेरा नकल करो। हाय अल्लाह जी उमर बाब हम आपको याद करते हैं इस तरह आपकी तरह बोल के जब आपका कॉल आते हैं तो फिर हम आपका आवाज सुनते हैं। हैं जी हैं जी। अच्छा जी बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से तंग आकर एक दिन किसी ने कहा अपनी अच्छा ये सलीम मेमन साहब ये सियासी लतीफा नहीं पढ़ेंगे हम। अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी फरमाए। और ये कह रहे हैं लुकमान सुलेमानी कश्मीरी क्लिफ्टन से। आमीन सुम आमीन। लुकमान साहब बात दरअसल ये कि हम सिर्फ बातें करते हैं। बहुत माजरत के साथ आपका मैसेज तो बहुत अच्छा है भाई यही मसला है कि हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं हमारे अमल सही नहीं है। आयशा मीर कह रही है नदीम एक बात बतानी है मैं एक नातख्वा हूँ माशाल्लाह। मैं सॉन्ग नहीं सुनती हूँ मगर आपके शो रोज सुनती हूँ और शो शुरू होने का वेट करती हूँ। आपका शो सुनकर मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। हाय अल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल है। अरे वाह भाई वाह। और कह रही है कि वो उसको सब्सक्राइब करें। भाई आप सबको भी बताते हैं आयशा के जो चैनल को आप सब लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा आयशा मीर के नाम से ऑफिशियल और जाहिर है उसमें इनकी नाते होंगी तो आयशा हम जरूर आपकी नाते सुनेंगे। और सो नाइस ऑफ यू थैंक यू आयशा। और बाबू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर तखील की दुनिया में खोकर तखयुल की दुनिया में अगर आप खोकर बंदे को कुछ देर के लिए ही सही दिल का सुकून अगर कोई मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है यकीन मानिए। तखयुल क्या है आप ये सोच रहे होंगे। और अब तो माशी अलग दिलो दिमाग के हालात भी ऐसे हैं कि तखयुल की दुनिया ही बेहतरीन राह फरार है इन तमाम परेशानियों से। क्या मैसेज आया भाई। मतलब वो जो मैंने ख्याली पुलाव बताए थे ना आपको वही परेशानियों का हल है। मैं भी जो है ना सुपरमैन बन जाता हूँ। सुपरमैन बनकर सारी मतलब ख्वाब में जो है सुपरमैन बन गए और उसके बाद सारे जितने सुपर हीरो यू कैन से जो भी सुपर हीरो और जितनी भी पाकिस्तान की परेशानियां है ना उन सबको दूर कर दिया। ये वो वाहिद दुनिया है जहां कोई कुछ भी ना तो छीन सकता है और ना ही तखयल की दुनिया से कोई निकलकर भागने की कोशिश करता है जैसे कि मैं। सही है भाई सही है। और जनाब और आपके मैसेजेस समी आ गए भाई आज तो वाह भाई वाह। दूल्हे मियां कह रहे अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई कैसे हैं आप। सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड गुफरान भाई। अच्छा जनाब फरमाइश कर दी है आपने भी और आजकल फरमाइशें जो हैं वो पूरी हो नहीं रही हैं यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और इसी बात पर हम आपको लेकर जा रहे हैं गाने की जानिब। गाना सज्जाद अली के बेतहाशा गाने हैं और आपको बड़े पसंद भी होंगे हमें भी पसंद है बड़े लेकिन ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके तम और भी गाने बहुत सारे बहुत बेतहाशा उनके गाने जो मुझे बहुत पसंद है लेकिन ये गाना भी मुझे बड़ा पसंद है। तो ये ट्रैक जनाब स्पेशली इरफान मेमन की जानिब से मेमन जितनी भी हमारी सिस्टर्स हैं उनकी जानिब से सायरा मेमन की जानिब से जो है सबको डेडिकेट करते हैं और इनको मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। एलो फड़ो

वेलकम बैक। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी वो थी, बिल्कुल वैसे ही बाल, बिल्कुल वैसे ही चाल, बिल्कुल वैसे ही रंग, बिल्कुल वैसे ही ढंग। हाँ जी, जी हाँ जी। मैसेजेस कर सकते हैं आपके एचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे 3636 पर। चर्चा भी कर रहे हैं नालो नाल हम लोग, गाने भी चला रहे हैं, और एक मैंने पहेली भी पूछी हुई है। वो पहेली मैं आपसे दोबारा पूछूंगा कि हाथ में डंडा ना तलवार, बताओ कौन सा है वो चौकीदार। तो जनाब इसका देना है आपने जवाब। हैं जी, जी हैं जी। समी भाई, आप की शादी कब है, हमें भी बुलाना, हमने आपके लिए 10 रुपए वाले नोटों की गड्डी भी लेकर रखी है। समीम क्या नाम है, सलीम मेमन साहब कह रहे हैं। सलीम मेमन भाई, क्या वहां पर प्रोग्राम है कोई, यानी कि समझ रहे हैं ना। करम साहब कह रहे हैं कि बहुत ही घटिया गाना चलाया आपने, अपनी पसंद नापसंद चलाने आ जाते हैं, लिसनर का भी ख्याल रखा करो। करम भाई, जब इस तरह के गाने चला करें तो स्विच चेंज कर दिया करो, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। स्विच चेंज करने में क्या हर्ज है, इस तरह के मैसेज करके आप क्यों अपनी तबीयत खराब कर रहे हैं। तबीयत का ख्याल रखें, ठंड पर डालें अपने अंदर, ठंड मतलब ठंडा माहौल रखें थोड़ा सा। और ना ही ये फरमाइशी प्रोग्राम है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, क्या फरमाइश करें और फौरन पूरी हो जाए। मजा आया आपका मैसेज पढ़ के कसम से। समी कह रहे हैं कि नदीम भाई आज तो बहुत ही अच्छा लगा, होने वाली दुल्हन के साथ घूमने गया हुआ था, वाह आइसक्रीम खाई, ये दिन याद करोगे तुम इंशाल्लाह, और बाद में भी अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां बिखेरते रहे, और आप अपनी खुशियों को हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला नजरे बच से बचाए। और कहते हैं कि मैं एक अच्छी जगह जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, आप सबसे दुआओं की रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा कि मुझे वो बुला लें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा। उम्मीद है हमेशा अच्छी रखा करो, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बहुत ही अच्छी जगह पर जॉब हो जाए। और आपके सवाल का जवाब है, ओके भाई इन्होंने भी सही जवाब दे दिया है। लव यू, लव यू, लव यू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है भाई, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो हबीबी यही सिलसिला है। अच्छा जी, तो गाने पसंद नहीं आ रहे भाई हमारे करम भाई को। करम भाई, अभी हम एक गाना ऐसा चलाएंगे कि आपको डेडिकेट करेंगे आपके अजीब तरीन मैसेज के बावजूद। उम्मीद करता हूं कि आपको वो पसंद आए। वो गाना मुझे नहीं पसंद, चले आप ये समझ लीजिएगा। और करम भाई फटाफट रेडियो स्टेशन चेंज कर दे। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत मजा आता है जब इस तरह का मैसेज आता है, और आप ये देखें मैं पढ़ता भी हूं। तो और आगे बढ़ते हैं। और एक गाने की जानिब जाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा, आप सबको। कहां गया यार वो गाना। जी जनाब, ये ट्रैक जो है ये

डेडिकेट कर रहे हैं संजू को और किन की जानिब से? नौरीन तौसीफ की जानिब से। नौरीन तौसीफ की फरमाइश है कि भाई नदीम भाई ये वाला गाना संजू को डेडिकेट करते हैं, तो संजू आपके लिए गाना एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने ओ। अच्छा फौरन से पेशतर मैसेज भी आ गया भाई, बहुत बहुत शुक्र नौरीन बहना, बहुत सब यार। और जनाब मैसेजेस 3636 पर एक मैं बलोची गाना ढूंढ रहा था यार, बड़ा जबरदस्त करम साहब के लिए वो वाला गाना मिल गया ना तो बड़ा जबरदस्त था। वो बेसिकली बरोही जुबान में है और उम्मीद करते हैं कि अगर वो गाना मिल गया तो हम आपको जरूर डेडिकेट करेंगे। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे 3636 पर। और अच्छा ठीक है, मेरी तारीफ कर रहा है समी बहुत सारी। और कह रहा है कि भाई अयाज भाई में और आप में थोड़ा सा भी एटीट्यूड नहीं है। शुक्रिया भैया। गोफरान भाई भी बहुत अच्छे इंसान है। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, ये तारीफें ही हो रही हैं भाई। अच्छा मानूर जो मुझे मेरी प्यारी सी बहना कहती हैं, बाब मेरा बच्चा आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल सही है, आपके बाबा जो चाहते हैं ना करने दें, यानी कि समझ रही है ना आप। और मीर बादशाह जलबानी साहब आ गए हैं और कहते हैं नदीम भाई, अरे यार अभी मैं आपको बताता हूँ यार, ये मेरा ख्याल है तीसरी चौथी मरतबा इन्होंने पूछा है मुझे और मेरे जहन से बिल्कुल निकल जाता है कि हमारी अभी ईद आने वाली है, ईद उल फितर कह रहा हूँ, ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद जिसको कहते हैं हम, तो वो आने वाली है। तो उस हवाले से पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की बेहतरीन कौन सी मूवीज आने वाली हैं इस ईद पर। तो सबसे पहले तो ये कि ये भी जो ईद गुजरी है मीठी ईद, इसमें आई थी दो पिक्चरें आई थी जो कि बड़ी हिट गई हैं, सुपर हिट गई है, एक तो ब्लॉकबस्टर और एक हिट गई है। उनमें एक पिक्चर तो थी पता नहीं आग लगे बस्ती में जो कि सुपर हिट गई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी, फाहद मुस्तफा की और माहिरा नूर पता नहीं क्या है उसका नाम। और उसके साथ शान साहब की भी एक मूवी आई थी बुल्ला, वो भी मूवी हिट गई थी। तो अभी कौन सी फिल्में आने वाली हैं इस हवाले से मैं जो है थोड़ा सा पूछता हूं अभी और आपको फिर बताता हूं। जहालत तो नहीं बता सकता ना, क्या करें ऐसी सीट पर बैठे हुए, यानी कि समझ रहे हैं ना। मायरा खान सही कह रहे हैं मेहरू कैसा लगा वैसे आपका घूमना फिरना, समी साहब आइसक्रीम खाना। जिंदगी में ऐसे जो लम्हात होते हैं ना वो इंसान हमेशा अपनी सारी जिंदगी याद रखता है। जो आपका महबूब हो यानी कि समी तो अपनी होने वाली बीवी के साथ जो है वो घूमने गए और आइसक्रीम वगैरह खाई और इंशाल्लाह ताला हम सफर बन जाएंगे, फिर जाना, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस छोड़ नहीं देना वरना जिंदगी अजाब हो जाएगी। शादी से पहले तो ले जाते थे आइसक्रीम की, अब क्यों नहीं ले जाते, ये भी होता है। तो खैर ये जो लम्हात होते हैं ना ये इंसान हमेशा याद रखता है, लेकिन खैर चाहे वो पहले के हों बाद के हों, इंसान जिससे प्यार करता है उसके साथ गुजरा हुआ हर लम्हा इंसान को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा है कि नहीं भाई। लुकमान साहब का मैसेज कहाँ गया, मैं भी जरा एक मिनट वो मैसेज लेकर आऊं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका, लुकमान साहब का मैसेज ही गायब हो गया यार, पता नहीं किधर, आइए रहा लुकमान सलामी, लुकमान सलामी मैंने सही पढ़ा था नाम पहले, हाँ लुकमान सलामी कश्मीरी। अच्छा लुकमान नाम जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो किन का है, हकीम लुकमान का, और हकीम लुकमान कौन थे जरा ये बताइए आप। चले आज ये सवाल हो गया, हकीम लुकमान कौन थे और किस दौर में थे ये भी बताइएगा।
یا اگر یہ بتا دیں ان کو گزرے کتنا عرصہ گزر چکا ہے تو یہ بھی بتائیں گے تو آپ اچھا لگے گا. نام تو سنا ہوگا آپ نے. بھائی تعریفیں ہو رہی ہیں ابھی سے بیگم کے بارے میں, سمی کر رہے ہیں تعریفیں, اچھی بات ہے. ماہرہ خان, ماہرہ خان بہت ہی مشہور ہے بھائی, ہر کوئی مجھے بتا رہا ہے ماہرہ خان ماہرہ خان ماہرہ خان. اچھا ہے جی, اچھا ہے اچھا ہے, اچھی بات, پسند ہے نا سب کو بہت. ایک بہت ہی زبردست ٹریک جناب, اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہمارے کون سے تھے بھائی, کرم بلوچ صاحب. کرم بلوچ صاحب یہ ٹریک آپ کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی بلوچ بہن بھائی سن رہے ہیں ان سب کے لیے. چل پے بھائی. اچھا جی, آلو پھڑو, اے جلدی سے پھڑ لو, آ گیا.

Welcome back, सुनियो ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा. मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करेंगे आप 3636 पर. और आसिफ अली कह रहे हैं सर मैं अपना खर्चा मैच खेलकर बना लेता हूं और खुश रहता हूं. आसिफ अली माशाल्लाह से, मतलब आप इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं कि आप इससे रोजगार आपने इसका बनाया हुआ है. जबरदस्त यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, जबरदस्त. इसीलिए आप अक्सर आपके जो जब क्रिकेट मैचेस वगैरह होते हैं तो उस में आप की आपका इंटरेस्ट जो है वो नजर आ रहा होता है. हबीबी, तो जनाब अब एक काम और करते हैं. हाँ,

वेलकम बैक कहेंगे जनाब आपको सबको एक बार फिर, और आपको ये बताएंगे मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने। स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ, आपका और मेरा साथ है 3 बजे तक, और 3 बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी और सारी रहेगा। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है, अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए, KHI लिखिए, स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम, प्यारा सा मैसेज, और उसको सेंड कर दीजिए 3636 पर। सवाल मैंने आज आपसे नहीं पूछा, आज मैंने आपसे रिडल पूछा है, और रिडल है हाथ में डंडा ना तलवार, बताओ कौन सा है वो चौकीदार। और काफी लोगों ने इसका दुरुस्त जवाब दिया है, और इस वक्त मैं फेसबुक पर लाइव भी हूं, और जो लोग मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं वो भी चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। और मैसेंजर्स पर जितने भी मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स थे उन सबसे रिक्वेस्ट है कि फौरन से पिश्तर यहां आ जाए। समी आ जाओ, संजू आ जाओ, और कौन था भाई, नौरीन तौसीफ, और जनाब आयशा मीर कह रही हैं नदीम मेरे हबी सिंधी हैं उनकी एक फरमाइश, एक सॉन्ग अगर प्ले कर दें। आए मुमताज मलाई का गाना है सही, उन्होंने सुनना है। आयशा मैं आपसे इस हवाले से थोड़ी सी माजरा चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि आप की फरमाइश जो है वो फौरन पूरी कर दी जाए, मगर अगर नहीं हो सके तो माजरत चाहूंगा, उसकी कुछ वजूहात हैं वो हम आपको बताएंगे बाद में। हाय द ग्रेट अली अतरे साहब जो हैं वो इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, थैंक यू वेरी मच। अली अतरे साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी शख्सियत खुद भी हैं, और एक पाकिस्तान के बहुत ही नामवर जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी खिदमात जो है बेतहाशा दी, रशीद अतरे साहब का आपने नाम सुना होगा, उनका मैं गाना भी चलाऊंगा। अतरे साहब आए हुए हैं भाई, अली अतरे साहब और वजाहत अतरे साहब, रशीद अतरे साहब पाकिस्तान के द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, और उनके बाद उनके साहबजादे उनकी जो है लेगेसी लेकर आगे बढ़े, और उनका नाम वजाहत अतरे साहब, बेतहाशा गाने उनके भी सुपर डुपर हिट। तो और उसके बाद इनके मतलब ये तीसरी नस्ल यानी कि अली अतरे साहब जो हैं ये भी प्राइवेट प्रोडक्शंस में जो है माशाल्लाह से जबरदस्त अपना काम कर रहे हैं, और 2-3 मूवीज में इन्होंने म्यूजिक भी दिया है, और बेतहाशा मशहूर गाने हैं इनके, वो भी आपको सुनाएंगे हम। तो थैंक यू वेरी मच अली भाई कि आप देख भी रहे हैं और पार्टिसिपेट भी किया। समी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह से लग रहा है कि मोबाइल ठीक हो गया है, थैंक यू। और मुश्की लैला आ गई हैं, मुश्की क्या नाम है भाई, और मुश्की लैला वाह वाह वाह वाह, आपका सबसे पहले तो नाम बड़ा अच्छा लगा भाई। अस्सलाम वालेकुम नदीम सर, पहली बार मैसेज कर रही हूँ जी, पहली बार ही आपके नाम की तारीफ भी हम कर रहे हैं, और इत्तफाक ऐसा है कि कुछ 2-3 प्रोग्राम पहले मैं मुश्क के हवाले से बात भी कर रहा था, मुश्क खुशबू को भी कहते हैं, तो खैर इसके मायने तो बड़े तवील हैं, लेकिन आप के नाम के हवाले से जो इसके मायने बनते हैं वो माशाल्लाह से सूट भी करता होगा आप। और सभी कहने माशाल्लाह से नितिन भाई कैमरा बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तारिक अब्बास साहब आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, की हाल है तुम्हारा, और ठीक ठाक हो, खामोश लिसनर हूँ 3 साल से सुन रही हूँ, अरे माशाल्लाह से। तो ये आपने, आपको मैं क्या कहूँ, मुश्की कहूँ या लैला कहूँ, मुश्की तो एक बहुत जबरदस्त खैर आपको लैला कहूँ या मुश्की कहूँ आप पहले ये बताइए, फिर हम आपको गाना भी डेडिकेट करेंगे अच्छा सा। और समी कह रहे हैं नदीम भाई लगता है आज आपके सिस्टम में कोई मसला हो गया है, मेरी रिक्वेस्ट प्ले नहीं हो रही। अरे जनाब आपकी रिक्वेस्ट प्ले नहीं हो रही, ये आपको किसने कह दिया, किसी की भी नहीं हो रही। अच्छा नदीम सर मुश्किल कह दीजिए, अरे वाह भाई वाह, बस आज से आपके लिए बेहतरीन किस्म के गाने चलाते रहेंगे, क्योंकि आपका नाम बहुत जबरदस्त है जिन्होंने भी रखा है, अल्लाह सलामत रखे उनको। अच्छा जी करम बलोच कह रहे हैं थैंक्स सदा साई बलोची सॉन्ग चलाने के लिए, मैंने स्विच चेंज नहीं किया और ना ही करूंगा।
क्योंकि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जीते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन करम बलोच भाई, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा, कोशिश किया करें कि लफ्जों का इंतखाब अच्छा किया करें। ये आपकी शख्सियत पे बड़ा असरअंदाज होता है। आपकी शख्सियत है ना, जो आप जितने अच्छे इंसान हो, जितने प्यारे हो, जितने मासूम हो, लेकिन आपकी गुफ्तगू में जो आपके इंतखाब किए हुए लफ्ज होते हैं वो दूसरे पर अपना असर छोड़ जाते हैं। जैसे कि संजू के हवाले से, संजीदा के हवाले से मैं ये कहूं कि गो के शो में उनका पार्टिसिपेशन जो है वो खामोशी से सुन रही है, लेकिन उनके लफ्जों का इंतखाब ऐसा खूबसूरत होता है, मुझे बहुत पसंद है, चाहे किसी को पसंद हो या ना हो, लफ्जों का इंतखाब बड़ा अच्छा होता है। अच्छा जी, मेरी फैमिली भी आपको सुनती है, आप बहुत अच्छे हैं। हाय अल्लाह जी, ना करें आप तो, मतलब देखे बगैर ही बहुत अच्छी लग रही हैं। सर शुक्रिया अल्लाह बाग का, तारिक अब्बास साहब कह रहे हैं, और तारिक अब्बास साहब के बारे में बताएं कि हमारे भतीजे हैं, ये लाहौर से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। नदीम सर, आप दलाइल से बात करते हैं। हाय अल्लाह जी, ये पहली ही शो में आपकी पार्टिसिपेशन में आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, आपके लिए बेतहाशा दुआएं हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पाने की ख्वाहिश होती है, हैं जी, मैं चाय की एक चुस्की ले लूं, ताकि गले की खिचखिच थोड़ी सी कम हो। हाँ जी, तो मैं अभी जिस ट्रैक की जानिब जा रहा हूं, उससे पहले मैं थोड़ा ये, बल्कि ये वाला ट्रैक नहीं कहता, इसकी बारे में मैं बाद में बताऊंगा। जिंदगी में चाह होती है कि ये इंसान हमें मिल जाए। ये चाह जो है ये इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। हाय अल्लाह जी, बस क्या बताऊं आपको, आपको खुद भी आप इस हवाले से समझ आ रहे हैं। खैर, मैं जो ट्रैक चलाना चाह रहा था वो अभी नहीं चला रहा। समी कह रहे थे कि भाई नदीम भाई आपने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की, तो समी आपकी फरमाइश पूरी नहीं की, लेकिन आपकी जानिब से आपकी होने वाली दुल्हन को एक ट्रैक डेडिकेट करूंगा जरूर, और वो ट्रैक ऐसा होगा जो आपको भी पसंद है। ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने समी की रिक्वेस्ट पे ही चलाया था, तो अभी भी समी की जानिब से उनकी होने वाली दुल्हन के लिए हेलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुने आप सबको और उम्मीद करता हूं कि समी तुम्हें गाना पसंद आया होएगा। जरा बताओ मैसेज करके फौरन से भेज दे गाना कैसा लगा। अच्छा अभी तारिक का मैसेज आया है और उसके साथ साथ बिनते मुमताज वो चौकीदार मुझे अभी आपके हाथ में क्यों नजर नहीं आ रहा। कौन सा चौकीदार जो मैं पूछ रहा हूँ हाथ में डंडा ना तलवार बताओ कौन सा है वो चौकीदार। ये ज्यादा अच्छा रदीफ काफी नहीं बन रहा। हाथ में डंडा ना तलवार बताओ कौन सा है वो चौकीदार। हाँ भाई यही पूछूंगा इसी तरह। समी कह रहे हैं शुक्रिया नदीम भाई सॉन्ग अच्छा था। जाहिर है तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही आपकी पसंद का गाना था। तो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो। और कह रहे हैं तारिक कह रहे हैं कि अबे भाई सर क्यों कह रहे हैं नदीम भाई बोलो यार चाचू बोल दो सर आप काफी थके हुए लग रहे हैं। ऐसा तो है मैं बता रहा हूं आपको काफी दिन मतलब नींद नहीं पूरी हो रही। मैं यहां जवाब दे दूं आपके सवाल का नहीं दो। अच्छा बिंदे मुमताज कह रही है कि उसका जवाब है घड़ी। एक ने कुत्ता जवाब दिया था और जिन जो लोग सही जवाब दे रहे हैं उनको उनसे गुजारिश है कि वो मैंने जिन ऐलान भी कर दिया था कि भाई इन्होंने सही जवाब दिया इन्होंने सही जवाब दिया वो ना दें। नौरीन तौसीफ कहाँ है मेरी प्यारी सी बहना इस्लामाबाद से। नदीम भाई पुराना मोबाइल मैंने मांगा था आपसे। बेटे आपको पता नहीं है हर एक के घर में जो शादीशुदा लोग हैं ना मर्द हजरात के घरों में शौहर होते हैं। मैं बीवी को शौहर के नाम से पुकारता हूँ। शौहर सबसे पहले कब्जा करता है उस पर। आज भी आप सुबह से निकले हुए होंगे बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ ये बात सही लग रही है। बिनते मुमताज करेंगे आपका बीपी हाई लग रहा है। मुझे तो बहुत ही हाई लग रहा है। मेरा जवाब सही है मुझे आपका पुराना मोबाइल चाहिए। सही है यार आपसे बढ़कर है आप जब चाहें आके ले जाएं यार शौहर को हम संभाल लेंगे। लुकमान हकीम एक समझदार बंदा था जिसके किस्से अरब में मशहूर थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से

हबशा के रहने वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं क्या लिखा हुआ है पहले, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थे और वो पहले में पी की जगह डी एल लिख दिया गया, तो इस वजह से मुझे वो पढ़ने में सही नहीं लग रहा था। शौहर पहले नदीम भाई क्या करें भाई, ऐसा ही है, तुम भी शौहर बनने वाले हो मतलब तुम्हारा भी शौहर आने वाला है हकीकत ये। आसिफ कह रहे हैं कि सर संजू आपकी बहुत अच्छी और सिंपल सी कॉलर है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप जो महसूस करते हैं वो ऐसा नहीं है। जी जनाब, तो बात मैं कर रहा था, एक गाने की जानिब बढ़ना था मैंने, कहां गया वो गाना, हाँ तो जनाब एक ट्रैक की जानिब लेकर जा रहा हूं। मानू और कह रही है बाबू आपको पता है लुकमान हकीम एक हकीम था एक रिक्वेस्ट की थी, बेटा रिक्वेस्ट आपकी अभी मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं, शायद मिल जाए, अगर मिल गया तो आपके लिए जरूर चला देंगे। ढूंढना पड़ता होता है गानों को, आप लोग कहते थे भाई चला दो, हमने जैसे गाना बोला है वैसे ही चला दो

उनका एक गाना मिल गया है जो आपके पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, तो वो गाना चला रहे थे हम जान, जो गाना चलाना चाह रहे थे वो चल ही नहीं रहा। अच्छा, इसका स्टाइल जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, पूरा गाना नहीं चलाऊंगा मानूर, क्योंकि ये बहुत लंबे लंबे गाने गाता है, 8-8 मिनट के, 10-10 मिनट के, ठीक है। तो इनका जो गाना चला रहे हैं वो जनाब शाह फारूक का गाना है, महानूर की फरमाइश है, उनकी आवाज है बेसिकली, जो आपने गाना गाया था वो तो नहीं चल रहा, तो लेकिन खैर चला रहे हैं हम। एलो फड़ो, चल गया नहीं चला, चल गया जनाब।

0: वाह भाई वाह, क्या बात है, वेलकम बैक कहेंगे ये क्या हमारे शाह फारूक साहब जो है ऐसा गाते हैं।
1: मैंने तुमको कहा था ना ना ना ना ना ना ना
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। खैर इस तरह इनके ट्रैक्स होते हैं एंड आई होप ये पश्तो ट्रैक आपको ये वाला पसंद आया होगा। आदिल कह रहे हैं कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में किंग ऑफ फोक लाला का अगर एक गाना हो जाए तो क्या बात है। सर नदीम सर यहां से इजाजत, शब्बा खैर। क्यों भाई मुश्किल, ये तो बात गलत हो जाएगी, कोई जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं पर रहेंगी, आपको हम एक गाना डेडिकेट कर देंगे जब तक आप नहीं जाएंगी। अच्छा जी सलीम अमन कह रहे हैं खरीदने को तो मैं हेलीकॉप्टर भी खरीद लूं, लेकिन फिर रिश्तेदार कहेंगे ऊपर से गुजर गया। सलीम अमन सही जा रहे हो। लाहौर में लिबर्टी चौक में आतिशबाजी भी हुई और साहिर अली बग्गा ने परफॉर्म भी किया, बहुत एंजॉय किया। मार्का हक के हवाले से बात आ रहे हैं और मिली नगमा बिल्कुल हम चलाएंगे मार्का हक के हवाले से और बड़े जोश खरोश के साथ जो है पूरे मुल्क में जो है इस हवाले से मनाया जा रहा है। अरे बस कर जाए, मुश्किल ये बात गलत है भाई, शर्मिंदा नहीं करें आप, जैसा आपका हुक्म सर आंखों पर, गलत बात है बिल्कुल जी, बिल्कुल आप इतना लिख देती जी बिल्कुल नो प्रॉब्लम, शर्मिंदा नहीं किया करें, मुझे इस बार ऐसे लफ्जों से शर्मिंदगी होती है, यानी कि समझ रही है ना। बाबू आठ साल से सुन रहा हूँ, छह साल आप ही के साथ और दो साल अब अकेले। श्रीद मानूर आप ही कौन, आप ही का नाम क्या था, आप ही का नाम भी बताओ। और सॉन्ग उनको बहुत प्यारा लगा मानूर को, जीती रहो मुस्कुराती रहो। और भाई सलमान आ गए हैं और कह रहे हैं सर अल्लाह का करम है ठीक हूँ, आज कल कहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, टाइम हो गया है मुलाकात हुए। यार सलमान यकीन मानो पता नहीं की हो गया भाई, कोई बुला ही नहीं रहा, वरना एक एक क्या चार चार स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग चल रही होती। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तारिक भाई क्या चल रहा है भाई, फुल टाइम मेरा भाई, ओके ठीक भाई सही है, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों दास फिरते हो सर्दियों की शामों में। अच्छा खैर एक गाने की जानिब और लेकर जाना था मैंने आपको, लेकिन आपके क्योंकि नालो नाल मैसेज भी आ रहे हैं वो भी हम शामिल कर रहे हैं, और सवाल का जवाब अगर बाकी सब भी देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। अलीमुद्दीन यूसुफ़ज़ई साहब भी यहाँ पर आ गए हैं, यस वो भी हमारे साथ वहीं पर होते हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज प्रोग्राम में वाजिबुल एहतराम मोहतरम जावेद अख्तर साहब का सॉन्ग सुनवा दीजिएगा जो खिताब गुल लाला के नाम करता हूँ। अरे भाई आपकी फरमाइश हमने पूरी तो कर दी थी। सलीम अमन कह रहे हैं थोड़ा सा आपकी आवाज हो जाए आए ना जी ना, सॉरी नदीम सर आप मेरी फैमिली के पसंदीदा हैं। भाई आप भी हमारी पसंदीदा हैं। अरे वाह भाई वाह, उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम रिजवान जरी साहब कैसे हैं आप, बहुत अरसे के बाद रिजवान भाई का मैसेज देखा और दिल बाग बाग हो गया है और कह रहे हैं कैसे मिजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आप कैसे हैं, और जब रिजवान भाई का मैसेज आना शुरू हो जाता है ना तो फिर थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि आदमी परेशान सा हो जाता है। अबे भाई देख भार कर बोलिएगा, सामने वाला बंदा जो है हल्का नहीं है, बहुत ऊपर से आ सकता है, हेलीकॉप्टर के जरिए भी आ सकता है। और रिजवान जैदी साहब को तो कौन नहीं जानता, हमारी आवाज की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, और इनके शो तो मैं खुद भी सुनता हूं और सीखता हूं। रिजवान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि चाहे चंद लम्हों के लिए ही सुन लें आप, यही हमारे लिए बहुत है जनाब। आदिल साहब कह रहे हैं वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ का। नदीम चाचू आप पर दिल अजीज है, आए जीते रहो शहजादे। अबे ये क्या इमेजो भेज रहे हो आदिल भाई, तुम्हारे लिए गाना चला देंगे लाला का, तुम बेफिक्र रहो। लाला से मुराद मेरी है अताउल्ला ईसा खैलवी साहब, पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त सी आवाज। لیکن خیر فی الحال ہم آپ کو لے کر جائیں گے ایک اور بہت پیارے سے ٹریک کی جانب. اور یہ ٹریک جو ہے ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جناب مشکی لیلا کو. مشکی لیلا جو ہے وہ جانا چاہ رہی تھی لیکن ان کی فیملی سن رہی ہے. ارے بھائی آپ خود ایک بہت اچھے انسان ہیں سر, آپ کا یہ کہنا ہی ہمارے لیے جو ہے ایوارڈ ہے رضوان بھائی, یقین مانیے. تو جناب سب سے پہلے تو آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹریک کی جانب, اور یہ مشکی لیلا آپ کے لیے ٹریک ہے ایلو پھڑو.

वेलकम बैक कहेंगे सुने सादगी तो हमारी जरा देखिए ब्यूटीफुल ट्रैक ओरिजिनली संग बाय नुसरत फतेह अली साहब और उनको ट्रिब्यूट पेश किया अमानत अली ने। ये भी बहुत पाकिस्तान की बेहतरीन आवाज और उम्मीद करता हूं कि आपको ये आवाज भी पसंद आई होगी। और हमारे रिजवान जैदी भाई से मैंने एक सवाल किया था, मायने पूछे थे और उन्होंने मायने की बजाय उसका हम वजन लफ्ज बता दिया और जिस पर बेतहाशा मैं हंसा भी, आप लोगों को नहीं बता सकता। अच्छा जी, ये ट्रैक हमने डेडिकेट किया था जी मुश्की को और उम्मीद करता हूं कि उनको पसंद आया होगा और उन्होंने खैर जवाब भी थैंक्स भी कर दिया है कि उनको ये ट्रैक बड़ा पसंद आया है। मानूर कह रही है आप ही का नाम कायनात है बाबू, मेरा काकू को मेरे दादी ने दवा दी थी, अल्लाह पाक आपको सबको। अच्छा भैया सही है। अच्छा जी सुस्ती भी हो सकता है, हम वजन लफ्ज जो है वो निकलना शुरू हो गए भाई। भाई आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग हम वजन लफ्ज इसमें इस्तेमाल ना करें, मेरा बहुत पसंदीदा ये लफ्ज है, नाम है, तो इसलिए वो रिजवान भाई को तो खैर इजाजत है। और वो कह रहे हैं कि शमी कह रहे हैं कि रिजवान भाई को मेरा सलाम। शमी आपसे गुजारिश है कि आप रिजवान भाई का शो जरूर सुना करें, यकीन मानिए बहुत मजा आएगा आपको, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ये पता नहीं कौन सा सलीम मेमन ने अपनी जुबान में अपना नाम लिख दिया, ये समझ में नहीं आ रहा भाई मेरे, इसकी तशरीह कीजिए। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। खैर जी गाना तो अभी अभी चलाया लिहाजा फौरन से पेशतर तो नहीं चला सकता, वक्त क्या हो रहा है, अरे तेरी खैर वक्त भी तेजी से गुजर गया और पता भी नहीं चला, तो लिहाजा वक्त ऐसा हो गया है कि हम आपको सवाल का जवाब भी दें। जी बिल्कुल अच्छा, इसका मतलब है कि आपने फॉलो किया हुआ है रिजवान भाई, बहुत अच्छी अक्कासी करते हैं हमेशा हमारे कराची की। भाई कराची की जो बासी हैं वो कराची के बारे में नहीं बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे, जो कराची के रहने वाले हैं जो कराची से मोहब्बत करने वाले हैं उनको तो तकलीफ है ही और होगी भी। और इसमें बस मैं ये समझता हूं कि मेरी काहली और ये कह लिए कि अपनी बुराई कैसे करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस हवाले से कोई कदम नहीं उठा सका। और इस हवाले से रिजवान जैदी साहब को सल्यूट है जनाब कि कराची से मोहब्बत का इजहार वो जिस तरीके से अपनी रील्स में करते हैं और कराची के मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं वो पब्लिकली सोशल मीडिया पर जो है वो सबको बताते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, अपना हिस्सा वो डाल देते हैं, बस हम अपना हिस्सा नहीं डाल पाते। हाँ लेकिन अपना हिस्सा जो है वो कम से कम इस माइक के जरिए आप लोगों की समातों तक पहुंचाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि भाई ट्रैफिक सिग्नल की पासदारी कर लो, भाई हेडलाइट जो है अपने गाड़ी की या मोटरसाइकिल की उनको लो बीम पर रखो। जी बिल्कुल समी, आप जितना भी इनके हवाले से बात कर रहे हैं जो मैं भी बात कर रहा हूं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मैंने जो आपसे सवाल किया था, सवाल क्या किया था, पहेली थी, हाथ में डंडा ना तलवार बताओ कौन है वो चौकीदार, तो इसका जवाब जो है वो तकरीबन 70% लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त दिया था, ताला इसका जवाब है। ताला जो होता है ना उसके हाथ में डंडा होता है ना तलवार होती है, लेकिन वो चौकीदारी करता है अपने घर की, ताला लगा कर जाते हैं आप। तो जिन्होंने घड़ी कहा था वो भी गलत कहा था और जिन्होंने कुत्ता कहा था वो भी गलत कहा था। अच्छा कराची बहुत अच्छा है लेकिन लाहौर लाहौर है, बेशक लाहौर लाहौर है, कराची कराची है और इसी तरीके से भाई फैसलाबाद फैसलाबाद है और पिशावर पिशावर है। जो इंसान जिस शहर में रहता है तो उससे मोहब्बत करनी चाहिए उसको। अगर तारिक आप लाहौर में रहते हैं वहीं पले बढ़े हैं तो ये आपका बनता है
کہ آپ یہ کہیں کہ لاہور لاہور ہے اور کراچی بہت اچھا ہے. اسی طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ لاہور بہت اچھا ہے, اوکے ٹیک ہے, لیکن کراچی کراچی ہے. جو تہذیب, جو تمدن, جو گفتگو, جو اب اور کیا, جو بھول گیا میں, چیزیں کراچی میں آپ کو ملیں گی وہ پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں نہیں ملیں گی. منی پاکستان ہے کراچی, میں یہ کہوں گا. تو سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے چکا ہوں. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. عدیل صاحب فرمائش پر فرمائش مارے جا رہے ہیں. عطا اللہ صاحب کی کوشش بالکل ہے بھائی, عطا اللہ صاحب ہم آپ کو بالکل سنائیں گے, یہ ہمارا آپ سے وعدہ رہا ہے. لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایک ایسے ٹریک کی جانب جو ہمارے پاکستان کا نام جو ہے اس ٹریک نے بھی بڑا روشن. پاکستان میں یہ ایک بہت زبردست جو مجھے بات اچھی لگی ہے, ابھی سے نہیں شروع سے گانا جو چلانا چاہ رہا تھا وہ والا تو میں پہلے نکال لوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ سے باتیں بھی کرتا رہوں, کیونکہ گانا نکالنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے.

ओरिजिनली गाना मैं चलाना चाह रहा था, और वैसे ये जो मिली नगमा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ये ट्रैक जो है बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स ने गाए हैं, और कराची का पैसा लाहौर में लगता है तो अच्छा लगता है सिर्फ लाहौर में नहीं लगता, पूरे पाकिस्तान में लगता है, ये बात फैक्ट है मैरिजन भाई, आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। और खैर जी, अभी जो है मैंने क्योंकि मिली नगमे की जानिब जाना है, और उससे पहले जो है मार्का हक के हवाले से भी थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी है, पाक अफवाज के हवाले से भी बात करनी है, और पाकिस्तान जिंदाबाद के हवाले से भी बात करनी है। तो पाक अफवाज जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, वो हैं तो हम हैं, वो हैं तो पाकिस्तान है जनाब। इसके साथ ही हम एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक की जानिब जा रहे हैं, और डेडिकेट टू पाक अफवाज।

0: की स्पेशल क्वालिटी सोप और सेवैया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अबटाबाद, गुजरात, जेलम, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100।
2: अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।